केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान

0: किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार

0: परिस्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
5: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
4: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchases.

0: अमल दरामद, जल संचय, जन भागीदारी, कैच दी रैन, पीने के पानी के जराए की पायदारी और जल जीवन मिशन 2.0 शामिल हैं। हुकूमत ने चीनी के डीलरों के लिए स्टॉक रखने की हद 4000 क्विंटल से हटाकर 2000 क्विंटल कर दी है, जिसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये हुक्म इस साल 30 नवंबर तक नाफिजुल अमल होगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि नई स्टॉक की हद का मकसद जखीरा अंदोजी और कयास आराई पर मबनी तिजारत पर रोक लगाना और मुनासिब दस्तियाबी और कीमत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर सार्फीन के मुफाद का तहफ्फुज़ करना है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: फिलहाल मुल्क भर में चीनी के डीलरों पर 4000 क्विंटल स्टॉक रखने की हद गुज़श्ता माह की पहली तारीख से नाफिजुल अमल है। तरमीम शुदा कवानीन के मुताबिक चीनी की तिजारत करने वाला कोई भी डीलर स्टॉक मौसूल होने की तारीख से 3 दिन से ज्यादा मुद्दत के लिए स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये डीलर मुल्क भर में किसी भी जगह 2000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रखेगा, ताहम कोलकाता और उसकी तौसीशुदा मेट्रोपॉलिटन इलाकों की मखसूस मार्केट जरूरियात के मद्देनजर इन इलाकों के लिए स्टॉक रखने की हद 4000 क्विंटल बरकरार रहेगी। सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि कोलकाता का इलाका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी हासिल कर रहा है और शिमाल मशरिकी खित्ते समेत मुल्क के मशरिकी हिस्से में सप्लाई कर रहा है, लिहाजा कोलकाता और उसके तौसी शुदा मेट्रोपॉलिटन इलाकों के लिए यह हद बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने सार्फीन को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क की मार्केट में चीनी की मुनासिब दस्तियाबी, बाकायदा फराहमी और कीमत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है और उसमें कांडा एक्सप्रेस और सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बफर स्टॉक से जारी करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी कीमतों में एतदाल को यकीनी बनाया जा सके। सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि खुर्दा इकदाम को 19 शहरों में नुमाया तौर पर बढ़ाया गया है जिसकी मदद के लिए वसी पैमाने पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 30 से ज्यादा ट्रकों को रवाना किया गया है। ज़रात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त की जायजा लिया। मीटिंग में 100 शिनाख्त शुदा जिलों में इस स्कीम के नफाज, तालमेल को मजबूत बनाने और किसानों के लिए जिला सतह पर कारकर्दगी को बेहतर बनाने के काम में तेजी लाने पर खास तवज्जो दी गई। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, फसल के तनवो और पायदार ज़रई तौर तरीकों को फ़रोग देना, फसल की कटाई के बाद ज़खीराकारी की सलाहियत को बढ़ाना, आपपाशी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, मुख्तसर और तवील मुद्दती ज़रई क्रेडिट को मजीद बढ़ाना और हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना इस स्कीम के 6 अहम मकासद हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया है कि इस स्कीम के 6 अहदाफ के तहत 100 जिलों का औसत स्कोर जुलाई में 16.31 पॉइंट्स बेहतर होकर 38.85 हो गया, जो अप्रैल के महीने में 22.54 था। वजारत ने बताया कि ये स्कीम 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों के साथ साथ रियासती स्कीमों के इंजमाम के साथ और निजी शोबे के इश्तराक से नाफिज की जा रही है। सालाना अहदाफ के मुकाबले में पेशरफ्त की निगरानी के लिए इन 36 स्कीमों के तहत 121 इशारिये मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें 74 आउटपुट इशारिये और 47 आउटकम इशारिये शामिल हैं। धन धान्य कृषि योजना को गुज़िश्ता बरस मरकजी काबीना की तरफ से मंजूरी दी गई थी और इसका आगाज 11 अक्टूबर 2025 को किया गया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तीसरे जलसे तकसीम असनात में शिरकत के लिए आज रायपुर का दौरा करेंगे। ये तकरीब इस इदारे की तालीमी सफर में एक अहम संग मील होगी, जिसमें मुमताज शख्सियतों की मौजूदगी में तलबा को डिग्रियां तफीज की जाएंगी। अमरीका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, हुरमुज, जिरोफ्ट, जजीरा, कोनार्का, चाबहार और लावान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। امریکی سینٹ

जनरल कमांड सेंट कॉम ने कहा है कि इसने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिनमें फिजाई दिफाई तनसीबात, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतें और मवासिलाती मराकज समेत दीगर ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान के सिपाही पासदारन इनकलाब IRGC ने उर्दून में वाकई अमरीकी फौजी कैंप टितिन पर

0: शिनाख्त में मदद के खातिर डीएनए सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाने ने बताया कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तजजिए का काम शुरू किया है। भारतीय फोरेंसिक टीम की तैनाती हालिया अचानक आने वाले सैलाब के बाद नेपाल की मदद की खातिर जारी कोशिशों का हिस्सा है। नेपाल के वजीर आजम बालेन्द्र शाह ने कहा है कि पिछले हफ्ते तिब्बत से भोटेकोशी दरिया के रास्ते रसुआ में दाखिल होने वाला तबाहकुन सैलाब आबोहवा की तब्दीली के बाईस आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने हिमालयी खित्ते के दर्जे हरारत में 1.8 डिग्री इजाफे का हवाला दिया। भारत और अमेरिका ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान मीटिंग के बाद अहम मादनियात पर करीबी तालमेल के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा तालुकात के तमाम पहलुओं और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। महकमे मौसमियात एमडी ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेनजेन में शुरू होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। आला दर्जे के खिलाड़ी सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी मर्दों के डबल्स मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने शंघाई तआवुन तंजीम के सरबरा इजलास से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबरा इजलास के इनेकाद से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि दुनिया को दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर आजम मोदी के इस तबसरे को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है कि आलमी बहरान के दौरान मुल्क की GDP में 7.8% का इजाफा हुआ, ये शहरियों की मेहनत का नतीजा है। गोवा दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर को इनकलाब और प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4000 क्विंटल से कम करके 2000 क्विंटल कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। भारत की फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महलुकीन की शनाख्त के लिए डीएनए जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। अजय पी झा से सुनेंगे आप गिटार वादन, राग होगा नट भैरव।

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य

0: दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. The Indian embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Kutmaltar area of Kathmandu Valley. According to the Nepal Police, 1,068 people have been recovered by yesterday evening, of which 400 had been only partial remains, complicating the identification process. The police said 4,606 people remain unaccounted for, including 583 foreigners, raising concerns that the death toll could increase further. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. The new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. At present, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of August this year. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 14 premises in connection with the alleged fraud in toll collection at the National Highways Authority of India, NHAI plazas. The searches are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act. The premises are located in Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Jammu, Madhya Pradesh and the National Capital Region.

0: घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए
0: हमारा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: जी दोस्तों, जिस दिन को याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाए या किसी का कभी गहराई से महसूस होने लगे, उस दिन आप समझ लीजिए हमने अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गवाया। क्योंकि वही पल सबसे अधिक याद आते हैं जिन्होंने हमें सच्ची खुशी दी होती है। और इस सुंदर विचार के साथ शुरुआत करते हैं मंजुला आज के कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल, और आज का दिन आस्था परंपरा और अपनत्व का सुंदर संगम है। आज मनाया जा रहा है पावन हल षष्ठी का व्रत, जिसमें माताएं अपनी संतान के सुख स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। आज भगवान बलराम जी की जयंती भी है। इन दोनों पर्वों का संदेश हमें अपनी जड़ों, अपने परिवार और प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। और आज एक और खास दिन है जो रश्मि जी बताएंगी।
1: आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा, सौम्य मुस्कान वाली अभिनेत्री साधना जी को, जिनकी आज जयंती है। उनकी सादगी, नजाकत और अभिनय, और मंजुला उनके जो साधना का बाल,
0: क्या बात है, आज भी लोगों ने वो स्टाइल अपना रखा है।
1: जी।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया। और अब आज का सवाल बता दीजिए रश्मि जी।
1: जी आज का सवाल है मंजुला भाई, आपको पहले ही जानकारी है पोषण सप्ताह चल रहा है और उसी से संबंधित है आज का सवाल भाई। बेस्ट हेल्थ टिप क्या देना चाहेंगे हमारे श्रोता स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए, वो कौन सा मंत्र है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? तो अपने मेल्स हमें इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए fmgoldga@gmail.com और हमें आपके हेल्थ टिप्स का इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, और आज है कोकोनट डे यानी नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। एक ऐसा फल जो पूजा में भी सबसे पहले चढ़ता है, रसोई का स्वाद भी बढ़ाता है, सेहत का भी ख्याल रखता है और धरती को हरा भरा रखने में भी अपना योगदान देता है। जी हाँ, बात करें नारियल की और 2 सितंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व नारियल दिवस।
1: भाई वाह, अगर मैं कहूँ कि नारियल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बेकार जाता है? नहीं भाई, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। नारियल का पानी हो, गिरी हो, दूध हो, तेल हो, छिलका हो, यहाँ तक कि उसका जो कठोर जो शेल रहता है ना, वो भी किसी ना किसी रूप में काम आता है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये प्रकृति का जीरो वेस्ट उपहार है।
0: और जो नारियल का जो कठोर शेल होता है, खोल होता है, वो पहले कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता था। देश के कई हिस्सों में कलाकार और छोटे उद्योग इन शेल्स से बेहद खूबसूरत और उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं, जैसे रश्मि जी कॉफी या चाय के कप हो गए, कटोरियां, चम्मच, प्लांटर, कीचेन और बहुत सारे सजावटी वस्तुएं, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स भी। जिस चीज को हम बेकार समझते थे, वही आज प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प बन रहा है।
1: क्या बात है, नारियल के रेशों से यानी कॉयर से दरवाजे की चटाइयां, रस्सियां, गद्दे, ब्रश, बागवानी के लिए ग्रो बैग और पौधों के लिए जो प्राकृतिक माध्यम से तैयार किए जाते हैं वो बैग्स भी बनते हैं। इससे न केवल कचरा कम होता है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात बताते हैं मंजुला।
0: हाँ, कि क्यों आपने ध्यान दिया होगा रश्मि जी की?

0: नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इसे शुभ, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, और शायद यही वजह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल को फोड़कर की जाती है।
1: और अगली बार जब आपके हाथ में नारियल आए ना, तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं चखिएगा, उसकी पूरी यात्रा के बारे में सोचिएगा। और क्योंकि ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, बस उसे सही नजर चाहिए और सही उपयोग की जरूरत होनी चाहिए।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अपना देश। और अब एक ऐसी कहानी उस महान गायिका की जिनके सुर धरती की सीमाएं पार करके अंतरिक्ष तक पहुंच गए, केसर बाई केरकर की। गोवा के केरी गांव में जन्मी केसर बाई केरकर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कठिन साधना की।

0: जी, और जयपुर अतरौली घराने के जो उस्ताद, उन्होंने वहाँ से संगीत सीखा और अपनी आवाज़ को ऐसी ऊंचाई दी कि आगे चलकर उनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। और उनकी गायकी में जो सिर्फ सुर ही नहीं थे, वर्षों की तपस्या थी। उनकी
1: बिल्कुल।
0: आवाज़ में ऐसी गहराई थी श्रोताओं, जो सीधे मन को छूती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी असाधारण गायकी से प्रभावित होकर उन्हें सुरश्री की उपाधि दी थी, यानी सुरों की रानी।
1: बिल्कुल रश्मि जी, और आगे चलकर उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जिसने केसरबाई केरकर को सिर्फ भारत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा बना दिया। साल 1977 में नासा ने वॉयजर 1 और वॉयजर 2 अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजे, और इनके साथ एक विशेष गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया, जिसमें पृथ्वी की ध्वनियाँ, भाषाएँ, संगीत और मानव सभ्यता की झलक सुरक्षित की गई थी। दुनिया भर के संगीत में से भारत की ओर से जिस आवाज़ को चुना गया, वह थी केसरबाई केरकर की। उनकी राग भैरवी की बंदिश जात कहाँ हो, इसके गोल्डन रिकॉर्ड में स्थान मिला।
0: और जात कहाँ हो, अभी तो और भी बाकी है उनके बारे में जानकारी। सोचिए, जिस आवाज़ ने सिर्फ संगीत सभाओं को मंत्रमुग्ध किया था, वही आवाज़ अब पृथ्वी के बाहर तारों के बीच यात्रा कर रही थी। और इत्तेफाक देखिए, उसी वर्ष 1977 में केसरबाई केरकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसी कलाकार जिसका संसार संगीत की साधना तक सीमित था, लेकिन उनके सुरों ने उस संसार को
1: बहुत
0: ही
1: कुछ।
0: अनंत कर दिया। केसरबाई केरकर सिर्फ एक महान गायिका नहीं थी, वो एक राग थी, एक साधना थी।
1: क्या बात है। और आज वो भारत की वो आवाज है जो धरती से निकलकर आसमान के पार अनंत यात्रा पर है। तो अगली बार जब कोई भारतीय शास्त्रीय राग सुने, तो याद रखिएगा, हमारे सुर सिर्फ हमारे कानों तक सीमित नहीं है दोस्तों। हमारे सुरों में इतनी शक्ति है कि वो समय में अंतरिक्ष की सीमाएं भी पार कर जाते हैं। और केसरबाई केरकर इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। सुर थम जाए तो गीत खत्म हो जाता है, लेकिन सच्ची साधना के सुर कभी खत्म नहीं होते।

0: अभी हम सुन रहे थे वाणी जयराम को फिल्म गुड्डी से, और लगता है कि आपके सामने कुछ मेल्स पड़े हुए हैं
1: जी, जो
0: जिसको आप पढ़ने
1: जवाब,
0: जा रही हैं।
1: जी
0: हाँ
1: जो प्रश्न आपने पूछा था
0: हाँ
1: कि भाई आप थोड़े से हेल्थ टिप्स दीजिए, तो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। और हाँ, जो मेल आईडी है वो है fmgoldgia@gmail.com। तो नवीन भाटिया जी का ये मेल आया है, कहते हैं कि सुबह की सैर हो और सादा खान पान हो और योग का साथ रहे। तो
0: बहुत
1: मोतीनगर से
0: बढ़िया।
1: आप बता रहे हैं।
0: और शिपाल गोयल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमको नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में करीब 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
1: जी, अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं पहले तो किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन सेहत को ख़राब कर देती है। खुश रहो और अच्छे खाने पीने पर ध्यान दो और खुश रहकर अच्छा जीवन जी सकते हैं।
0: और चरणदास जी लिखते हैं, रश्मि जी मंजुला जी नमस्कार, और इनका कहना है पैदल घूमना, साइकिल चलाना, पानी ज्यादा पीना, खुश होकर रहना, भोजन करना, संगीत, रचनात्मक काम और FM गोल्ड को धन्यवाद करना।
1: जी, और सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, कह रहे हैं कि सादा भोजन जो है वो सबका दादा भोजन है। भाई
0: क्या
1: सादा
0: बात।
1: खाओ और स्वस्थ हो जाओ, फास्ट फूड से रहो दूर और निरोगी रहो, रखो शरीर, और सीजनल फल सब्जी खाओ और सेहत बनाओ। भाई कुछ कुछ कविता लिख डाली है
0: क्या
1: और
0: बात,
1: कह रहे हैं कि आपका
0: जुरानीस।
1: जीवन जो है वो शुभ हो, ऐसा भी लिख रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल्स के लिए। तो आगे भी आप लिखते रहें, हमारा मेल आईडी फिर से नोट कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन भी, हमारा सवाल ये है कि आपके अनुसार कौन सा बेस्ट हेल्थ टिप हो सकता है या फिर फिटनेस टिप्स। हमारा मेल आईडी है fmgoldgia@gmail.com।
1: जी, और एक और मेल हमारे पास आ गई है दिलावर खान, वो कह रहे हैं नारियल प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जिसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपने जानकारी दी
0: जी
1: थी
0: जी
1: वो सारी जानकारी उन्होंने दी है। और वो कह रहे हैं रघुवीर नगर से हमारे साथ हैं जनाब दिलावर खान साहब, मोहतरमा हसीना बानो, एलिजा नायाब और प्यारे लड्डू। वाह क्या बात है प्यारे।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से।
1: और मंजुला, एक वादा एफएम गोल्ड का भी है अपने श्रोताओं के साथ कि भाई वो उनका रहेगा और उनके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाता रहेगा, इन्फोटेनमेंट लाता रहेगा। और ऐसी ही एक जो जानकारी है वो तुम लेकर आई हो।
0: बिल्कुल, और वो है सामाजिक शिष्टाचार। मेट्रो में, बस और जो भी सार्वजनिक जगह होते हैं उन पर तेज आवाज़ में मोबाइल और रील देखने की आदत बदल दीजिए। कभी मेट्रो में सफ़र करते हुए अचानक किसी फ़ोन की तेज़ घंटी गूंजने लगती है, कभी बस में कोई पूरी आवाज़ पर रील चला दे, या हॉस्पिटल में प्रतीक्षालय, पार्क, रेलवे स्टेशन या बैंक की कतार में कोई बिना ईयरफोन के वीडियो देखने लगे, तो रश्मि जी कैसा लगता है?
1: ओ, मैं क्या ही बताऊँ, हो सकता है वो हमें तो कुछ मिनट की बात लगी, लेकिन सोचिए वही कुछ मिनट किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं, किसी बुजुर्ग के सरदर्द की वजह बन सकते हैं, किसी माँ की गोद में सो रहे बच्चे की नींद तोड़ सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जो पूरे दिन की थकान के बाद बस कुछ पल शांति के चाहता।
0: बिल्कुल, और यही तो है सामाजिक शिष्टाचार, ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है। आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है, रील देखना, गाने सुनना या वीडियो देखना बिल्कुल सामान्य सी बात है रश्मि जी, लेकिन सार्वजनिक स्थान केवल हमारे नहीं होते, वहाँ हर व्यक्ति का सम्मान जो अधिकार होता है। इसलिए यदि हमें कुछ सुनना है तो ईयरफोन का उपयोग करें, अगर ईयरफोन साथ नहीं है तो आवाज़ इतनी धीमी रखें कि हमें सुनाई ना दे।
1: जी, और साथ में एक और अच्छी आदत ये है कि भाई यदि फ़ोन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा धीरे बोलें, या बातचीत को संक्षिप्त रखें, पूरी बोगी या बस को हमारी बातचीत सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। सभ्यता का अर्थ जो होता है वो केवल बड़े बड़े आदर्श नहीं होते। मंजुला, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो चिप्स का पैकेट, पहली बात तो मेट्रो में खाना नहीं चाहिए, लेकिन
0: ऐसे भी फूड नहीं खाना,
1: नहीं खाना चाहिए, लेकिन सफाई का अगर हम ध्यान रखें, जो अपने पैकेट्स हैं वो वापस बैग्स में रखें, गंदगी ना फैलाएं, तो हम कहेंगे ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है।
0: बिल्कुल, और याद रखिए अच्छे संस्कार केवल घर तक नहीं सीमित रहते दोस्तों, वो सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देते हैं। हमारी एक छोटी सी सावधानी किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सुकून बन सकती है।
1: तो फिर आज से एक छोटा सा संकल्प लें, रील देखेंगे लेकिन एयरफोन के साथ, अपनी मेट्रो को सफाई से इस्तेमाल करेंगे, साफ रखेंगे, फोन पर बात करेंगे लेकिन धीमी आवाज में, और सार्वजनिक स्थानों पर दूसरों की शांति का पूरा सम्मान करेंगे, क्योंकि एक जागरूक समाज की पहचान केवल साफ सड़कें नहीं बल्कि एक साफ मेट्रो और संवेदनशील नागरिक भी होते हैं।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा, मैं कैसी हूँ?

0: अभी हम सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को फिल्म बॉबी से। और दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां समय बताने के लिए घड़ी नहीं बल्कि सूरज की किरणें काम करती हों, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में तुंगा नदी के तट पर 14वीं शताब्दी का श्री विद्याशंकर मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे बस आप देखते रह जाएंगे
1: जी। और इस मंदिर के मुख्य मंडप में बने जो 12 विशाल राशि स्तंभ हैं, वो केवल पत्थर के खंभे नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्रह्मांड की गति से जुड़े हुए वैज्ञानिक चमत्कार हैं। हर सौर महीने की पहली सुबह सूरज की पहली किरण ठीक उसी राशि वाले स्तंभ पर जाकर पड़ती है जिसका महीना चल रहा होता
0: क्या बात है,
1: जी। यानी सूर्य की चाल, राशियों का क्रम और मंदिर की संरचना, सब कुछ इतनी सटीक गणना के साथ बनाया गया है कि आज भी ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है।
0: बिल्कुल सही। और मंदिर की पूरी संरचना में गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान का ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देता है जो ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज केवल उत्कृष्ट शिल्पकार ही नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे ज्ञाता भी थे।
1: बिल्कुल सही कहा मंजुला। और जिस एडवांस साइंस को आज दुनिया आधुनिक तकनीक का चमत्कार मानती है ना,

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म दिल ने फिर याद किया। और रश्मि जी, अगर अपने शौक को एक लाइफ स्किल में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा?
1: बहुत
0: अपने
1: अच्छा
0: हुनर
1: रहेगा।
0: को अपनी ताकत में बनाइए। अक्सर हम अपने शौक को बस खाली समय बिताने का जरिया समझते हैं। किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है और किसी को तस्वीरें खींचना पसंद है, तो किसी को कैमरे के सामने बोलना पसंद है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही शौक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? क्योंकि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर इंसान के भीतर जन्म से मौजूद हो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है जब हम कुछ सीखते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर भी कोशिश जारी रखते हैं।
1: तो आज बात करते हैं अपने शौक को जीवन कौशल में बदलने की। मान लीजिए आपको लिखने का शौक है, तो भाई डायरी लिखना शुरू कीजिए। रोज अपने विचार जो है वो शब्दों में उतारिए। धीरे धीरे आपकी भाषा, आपकी सोच और अपने विचार जो है वो व्यक्त करने की क्षमता आप देखेंगे कि बेहतर हो रही है, और
0: बिल्कुल,
1: यही शौक आगे चलकर संवाद कौशल भी बन सकता है।
0: कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल। अगर आपको कैमरे के सामने बोलना अच्छा लगता है तो अपने छोटे छोटे वीडियो बनाइए। शुरुआत में अपनी आवाज़ और चेहरे को देखकर थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन धीरे धीरे वही कैमरा आपका डर कम करेगा और बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाएगा। खाना बनाने का शौक है, कोई बात नहीं, नई विधियां सीखिए, अपने हाथों से कुछ नया बनाइए और परिवार या दोस्तों के लिए परोसिए।
1: और अगर तस्वीरें खींचने का शौक है तो केवल तस्वीरें मत खींचिए, उनकी कहानी भी समझिए। किसी जगह, किसी व्यक्ति या प्रकृति को एक अलग दृष्टि से देखना सीखिए। इससे आपकी रचनात्मक सोच भी मजबूत होगी। और अगर आपको कोई वाद्य यंत्र सीखने का मन है, नृत्य करने का मन है या कोई नई कला सीखने का शौक है, तो उसे मनोरंजन तक सीमित मत रखिए। नियमित अभ्यास आपको अनुशासन सिखाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शौक में हमेशा थोड़ी सी चुनौती जोड़िए। जो आज थोड़ा सा कठिन लगता है उसे ही अपना लक्ष्य बनाइए।

0: जब तक आत्मविश्वास नहीं बनता ना, तब तक हमें थोड़ा सा डर लगता है। आत्मविश्वास तब बनता है जब हम डर के बावजूद कहते हैं चलो
1: कोशिश
0: कोशिश करके
1: करके
0: देखते
1: देखते हैं।
0: हैं।
1: तो अगली बार जब कोई पूछे कि आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है, तो सिर्फ ये मत बताइए कि आपको क्या करना पसंद है, ये भी सोचिए कि आपका शौक आपको क्या सिखा रहा है। और याद रखिए, छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े आत्मविश्वास की नींव रखती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, किसी कठिन काम को पूरा करते हैं, या असहज होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद को एक संदेश देते हैं कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म कारवां से, और लगता है फिर से मेल्स पे नजर है रश्मि जी की।
1: जी, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए ताजे फल और सब्जियां और पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और साथ में कह रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मनदीप भिवानी जिले हरियाणा से, वो कह रहे हैं मैं आपके हेल्थ शो के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े कुछ अच्छी सलाह और टिप्स जानना चाहता हूँ। वो जानना चाहते हैं हमसे, मेरा उद्देश्य सप्ताह में लगभग 5 दिन रनिंग और व्यायाम करना, स्वस्थ और संतुलित भोजन लेना, खुश रहना और अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताना है। वो चाह रहे हैं कि हेल्थ शो के माध्यम से हम बताएं उन्हें कि भाई सप्ताह में 5 दिन रनिंग करना क्या उचित है, और रनिंग के साथ किस प्रकार का स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, और अन्य बातें जानना चाह रहे हैं। तो जरूर हम लोग कोशिश करेंगे जो आपका जी
0: में
1: ये हाँ कि इस तरह की जो कार्यक्रम है हेल्थ, ऐसा आपके लिए हेल्थ शो जरूर लेकर आए।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं कुछ ब्यूटी मिथ्स की। सुंदर दिखना किसे पसंद नहीं, लेकिन सुंदर दिखने की चाह में हम कई बार ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो सच नहीं, सिर्फ भ्रम होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे जो मिथ्स हैं उसका सच।
1: भाई सब लोग जानते हैं, सोचते हैं कि महंगे प्रसाधन ही अच्छे होते हैं। सच तो ये है कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता उसकी कीमत से नहीं होती, बल्कि जो उसमें पदार्थ डाले जाते हैं, सामग्री डाली जाती है, आपकी त्वचा की जो ज़रूरत है उससे तय होती है। कई बार ना साधारण और सही उत्पाद भी ना बहुत कमाल कर जाते हैं दोस्तों।
0: और एक मिथ और है कि एंटी रिंकल क्रीम झुर्रियाँ मिटा देती है। सच तो ये है कि ऐसी क्रीम त्वचा को कुछ समय के लिए सॉफ्ट बना देती है, लेकिन बढ़ती उम्र को रोकना या रिंकल्स को पूरी तरह से मिटा देना संभव नहीं है। सफेद बाल फिर से हमेशा के लिए काले हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी गलत है। अगर बाल उम्र, अनुवांशिक कारणों या मेलेनिन की वजह से सफेद हुए हैं, तो आज तक ऐसा कोई प्रामाणिक उपाय नहीं है जो उन्हें स्थायी रूप से फिर से काला कर सके।
1: हाँ, और एक और जो गलत फहमी है वो ये है कि त्वचा का रंग बदला जा सकता है। भाई वास्तव में आपकी प्राकृतिक जो त्वचा है उसका रंग आपके जीन्स तय करते हैं। सही देखभाल से धूप के कारण आई जो लालिमा है, जो कालिमा है, वो कम हो जाती है। लालिमा तो भाई आपके जो हीमोग्लोबिन से आती है, और जो त्वचा स्वस्थ और दमकती दिखाई देती है, लेकिन उसका जो मूल रंग है ना दोस्तों, वो नहीं बदला जा सकता। बालों की जो बनावट है वो हमेशा के लिए बदली जा सकती है, ये भी एक जो है गलत फहमी है। और घुंघराले बालों को हमेशा के लिए सीधे, या सीधे बालों को हमेशा के लिए घुंघराले बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। और जो आप रासायनिक उपचार वगैरह कराते हैं ना, वो सिर्फ कुछ समय तक असर दिखाते हैं। नए उगने वाले जो बाल हैं वो अपनी प्राकृतिक बनावट के साथ ही आते हैं।
0: और इसीलिए किसी मैजिकल प्रोडक्ट के पीछे भागने से बेहतर है अपने शरीर को भीतर से मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए, क्योंकि असली सुंदरता वही है जो अच्छे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मुस्कान से झलकती है।

0: अभी हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और येसुदास को फिल्म त्रिशूल से
1: जी। और इस गीत के साथ ही आज के इस सफर को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
0: तो दीजिए मंजिला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।

0: अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्देस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर

0: बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे 1982 में रिलीज हुई एक बेहतरीन हिंदी फिल्म तेरी कसम की। इस फिल्म की कहानी रिश्तों में प्यार, अहंकार और आत्मसम्मान की गहराई को छूती है। इस फिल्म का निर्देशन किया था एससी त्रिलोकचंदर ने और इस कहानी पर पहले ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में फिल्म बन चुकी है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है तेरी कसम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म के कलाकारों की। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, गिरीश कनाड, निरूपा रॉय और रंजीता कौर ने। फिल्म में एक दिलचस्प बात ये भी थी कि पहले ये भूमिका कि इस भूमिका के लिए रति अग्निहोत्री पर विचार किया गया था, लेकिन निर्माता टोनी जुनेजा को लगा कि वो कुमार गौरव से बड़ी दिखेंगी, इसलिए भूमिका पूनम ढिल्लो को मिली। हालांकि बाद में इस निर्णय को उन्हें थोड़ा अफसोस से भी हुआ। वहीं तेरी कसम कुमार गौरव की दूसरी फिल्म थी। 1981 में उनकी पहली फिल्म लव स्टोरी के जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों को इस फिल्म की का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह फिल्म लव स्टोरी जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई। आगे हम फिल्म की कहानी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की जो फिल्म है वो है तेरी कसम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त होस्ट राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। डॉली यानी पूनम ढिल्लो और टोनी यानी कुमार गौरव की। डॉली एक अमीर घराने की एक बिगड़ैल अमीर लड़की है जिसका पालन पोषण उसके बड़े भाई राकेश ने बड़े लाड़ प्यार से और ऐशो आराम से किया है। वहीं टोनी एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसी कॉलेज में पढ़ाता है जहां डॉली पढ़ती है। टोनी दिल ही दिल में डॉली से प्यार करता है लेकिन अपने हालातों के कारण ये बात कहने से झिझकता है। टोनी कॉलेज ख़त्म होने करने के बाद नौकरी की तलाश करता है। उधर डॉली का भाई इस बात से अनजान कि डॉली टोनी को पसंद करती है, वो टोनी की काबिलियत देखकर उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब डॉली को एक गायक की आवाज़

से प्यार हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि वो आवाज़ टोनी की है, तो ये जानने के बाद डॉली टोनी से शादी करने का फैसला करती है। लेकिन टोनी अपनी बहन शांति की शादी से पहले शादी करने से इनकार कर देता है। शांति की शादी की समस्या को हल करने के लिए डॉली का भाई शांति यानी रंजीता कौर से शादी कर लेता है। हालांकि डॉली का अहंकार और उसके अमीर होने का घमंड टोनी के परिवार के साथ तनाव पैदा कर देता है। डॉली टोनी की माँ यानी निरूपा रॉय का अपमान करती है और टोनी के अनुपस्थिति में उन्हें एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करा देती है, यही कहकर कि वो बीमार हैं। जब टोनी को इस बात का पता चलता है तो वो बेहद आहत होता है और क्रोधित होता है। वो डॉली को अपनी माँ से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन डॉली माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है और अपने भाई के घर ये बोलकर चली जाती है कि जब तक टोनी खुद से लेने नहीं आएगा वो वापस नहीं आएगी। टोनी गुस्से में आकर राकेश की कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद टोनी कड़ी मेहनत करता है और एक मशहूर गायक बन जाता है। कहानी को आगे और जानने के लिए ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन आखिरकार कहानी अहंकार, प्यार और रिश्तों को समझने और उससे सबक लेने की है। टोनी और डॉली दोनों अपने अपने फैसलों पर पछताते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और प्यार को फिर से निभाने का वादा करते हैं। तेरी कसम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और त्याग की अहमियत को भी दर्शाती है। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म का नाम है तेरी कसम। और हमारे प्यारे श्रोताओं का भी मेल हमारे पास आ गया है, तो उन्हें भी हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात के बाद। इस फिल्म की जो कहानी थी उसे एससी त्रिलोक चंदर और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखी थी, जिनकी रचनात्मक सोच ने फिल्म को एक मजबूत आधार दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अच्छी कहानी ही काफ़ी नहीं होती है, उसे पर्दे पर सही रूप में लाने का काम संपादकों का होता है। वामन बी भोसले और गुरुदत्त सिराली ने अपनी मेहनत और कुशलता से इस कहानी को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। साथ ही सिनेमेटोग्राफर जल मिस्त्री ने अपने कैमरे के हुनर से फिल्म के हर फ्रेम को ऐसा सुंदर रूप दिया कि फिल्म का हर सीन सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचा। उनके दृश्यात्मक योगदान ने फिल्म को और भी खास बना दिया। और वहीं इस फिल्म का संगीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। आर डी बर्मन के सुरों और आनंद बख्शी के गीतों ने इस फिल्म को खास बना दिया। सभी गाने अमित कुमार की आवाज़ में गाए गए थे, जिनमें से एक गाना लता मंगेशकर के साथ युगल था। तो चलिए, अब हमारे श्रोताओं का जो मेल आ गया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है पलियारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन का, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और आगे बढ़ते हैं, ये छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा का, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित आहूजा का, ये आया है हमारे पास। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें मेल कर रहे हैं, और वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का आया है हमारे पास मेल। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, ये लिखते हैं एक ही फिल्म से आज आप फिल्म तेरी कसम की कहानी सुना रही हैं। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया लग रहा है, जो जानकारी आप दे रही हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और ये है भंवरपुर बसाना से राधेश्याम और चंपा जी का, और ये है कमलकांत गुप्ता, श्रीमती रिमझिम गुप्ता पिपरिया से लिखती हैं ये हमें मेल। और भी हमारे श्रोता हैं, ये हैं मुकम्मा पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से, ये हैं सुधाकर राजे, प्रशांत राजे, जगुताई जाधव और कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, कल्पना सनावी और प्रणाली और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक जी का, और ये है पोटली कला दुर्ग से संजय कुमार साहू का। तो आगे बढ़ते जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी और पर्ल विलिस कोस्टा का। श्रोताओं, अब जो हम आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं उसके मुखड़े के लिए आनंद बख्शी ने प्रसिद्ध शायर खातिर गजनवी की गज़ल गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए से प्रेरणा ली थी। तो चलिए सुनते हैं इसी खूबसूरत से गीत को।

हमारे पास कुछ श्रोताओं की और मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन और मीना मस्कीन का, और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत और कमल पिंगावाला चौक जालंधर से।

हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं, वो है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। तो श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तेरी कसम फिल्म भले ही अपनी सफलता के मामले में कुछ पीछे रह गई, लेकिन इसके गाने, दिल को छू लेने वाले संवाद और अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। तो श्रोताओं, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज इसे देखने का समय ज़रूर निकालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और चलते चलते सुनिए इसी फिल्म का ये आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी है।

क्यों नहीं हो खबर भारत तो पौने 18,385 मगरी नाल नेपाल पहुंचे है। नेपाल विच भयानक खड़ा मरण वाले की गिनती 1100 नूं पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच जल शक्ति मंत्रालय दे विभागी सम्मेलन के समाप्ति समागम नूं संबोधन करनगे। विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ने कहा है कि भारत विच मौजूदा 7-8% विकास दर तों अगे वधण दी समर्था है। बेलजियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर अज तों भारत के 3 दिन दौरे ते होणगे ते भारत के किदंबी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट के दूजे गेड विच पहुंच गए ने। भारत का पौना जहाज अज राहत ते बचाव समगरी लैके नेपाल पहुंचा है। इस विच 11 मैंबरी बचाव टीम विशेष उपकरण के 5 टन तों वध जरूरी दवाइयां शामिल ने। नेपाल विच भारतीय राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट विच ऐलान किया कि भारत नेपाल विच चल रहे बचाव ते राहत कार्यां विच हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इस दौरान नेपाल विच भयानक खड़ा कारण मरने वाले की गिनती 1100 तों वध हो गई है। नेपाल की राष्ट्रीय आफत जोखिम प्रबंधन अथॉरिटी अनुसार हुण तक 1,114 लाशां बरामद कीतियां गईयां ने। दक्खणी चितवन जिले विच सब तों वध लाशां बरामद कीतियां गईयां ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक 95 लाशां की पछाण हो चुकी है ते उन्हां दे परिवारों नूं सौंप दित्तियां गईयां ने। लगभग 4,000 लोग हालां भी लापता ने। इस तरह 11 हड़ प्रभावित पन बिजली प्रोजैक्टां नाल जुड़े 983 लापता लोगों बारे अजे तक कोई जानकारी नहीं है। नेपाल विच वापरे दुखान तों बाद बिहार के सरहदी जिले में हड़ां का खतरा मंडरा रहा है। बागलपुर विच गंगा नदी के किनारे चिंतावां वध गईयां ने। बागलपुर जिले के खारिक ब्लाकों च नदी के पद्धर विच वाधे और जमीन के कटा कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच जल शक्ति मंत्रालय के विभागी सम्मेलन के समाप्ति समागम नूं संबोधन करनगे। इस सम्मेलन केन्द्र ते राज्यां नूं मुख खेतरी तरजीहां ते विचार वटांदरा करन ते समाबद्ध कार्य योजनावां विकसित करन लई इक थां इकट्ठा करेगा। इस सम्मेलन चार मुख खेतरां पानी दे बुनियादी ढांचे दे प्रोजैक्टां नूं समें सिर लागू करना, पानी दी संभाल च जन हिस्सेदारी कैच द रहन, पीण वाले पानी दे वसीलें दी स्थिरता ते जल जीवन मिशन 2.0 ते केन्द्रित है। इस पहलकदम का उद्देश्य राष्ट्रीय टीचों की सांझी जिम्मेवारी उत्साहित करना ते यह यकीनी बनाना कि विचार वटांदरे नाल शासन ते सेवा प्रदान करने विच मापनयोग सुधार हो सकन। विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ने कहा कि भारत विच मौजूदा 7-8% विकास दर तों अगे वधण दी समर्था है। श्री बंगा ने विश्वव्यापी ऊर्जा दबाव, व्यापारक अनिश्चितता अते एल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन मजबूत दसिया है। अमरीका राष्ट्रीय G20 वित्त मंत्रियों की मीटिंग दौरान एक इंटरव्यू में श्री बंगा ने कहा कि ताजा विकास संकड़े भारत की आर्थिकता की मौजूदा मजबूती दर्शाते हैं। विश्व बैंक के प्रधान ने सेवाओं

पर एक सुन पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समाप्ति समागम में संबोधन करेंगे। विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ने कहा कि भारत के मौजूदा 7-8% विकास दर तो अगे बढ़ने की समर्था है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेलर आज तो भारत के 3 दिन दौरे से होंगे। भारत के किदंबी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूजे गेड में पहुंच गए हैं। इस तरह ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल की मदद की खातिर जरूरी दवाओं और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल 5.5 टन इमदादी सामान ले जाने वाला 5वां तैयारा रवाना कर दिया है। नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 1,100 से तजावुज कर गई है। आलमी बैंक के सरबराह अजय बंगा ने भारत की इकतसादी तरक्की की तारीफ की है और कहा है कि आलमी सतह पर इकतसादी मुश्किलात के बावजूद भारत में 8% से ज़्यादा शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत और इकतसादी तआवुन को मजबूत बनाने के इकदामात का जायजा लेने के लिए तजारत से मुतालिक दोनों ममालिक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनाकिद हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत चाइना ओपन बैडमिंटन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव की कार्रवाइयों में तमाम मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। आज राहत और बचाव की इमदाद लेकर 5वां भारतीय तैयारा नेपाल के लिए रवाना हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इस तैयारे में खसूसी साजो सामान से लैस 11 रुकनी बचाव टीम नीस 5.5 टन इंतहाई ज़रूरी दवाएँ भेजी गई हैं। 19 अरकान पर मुश्तमिल एक भारतीय फोरेंसिक टीम ने फोरेंसिक माहिरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त में मदद की खातिर डीएनए सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाने ने बताया है कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तज्जिए का काम शुरू किया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक कल शाम तक 1,068 लाशें निकाली गईं, जिनमें से 400 लाशों की शिनाख्त में दुश्वारी पेश आ रही है। पुलिस का कहना है कि 4,606 अफराद का कुछ अता पता नहीं है, जिनमें 583 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। इससे तशवीश में इजाफा हो गया है कि मरने वालों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। नेपाल में कुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 1,100 से तजावुज कर गई है। नेपाल की कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक पिछले हफ्ते आने वाले तबाह कुन सैलाब में बह जाने वाले 1,114 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा लाशें जनूबी ज़िला चितवन से बरामद हुई हैं, इसके बाद मशरकी नवालपरासी ज़िले से बरामद हुई हैं। हुकाम ने बताया कि अब तक 95 लाशों की शिनाख्त करके उन्हें उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। तकरीबन 4,000 अफराद अब भी लापता हैं और उनसे कोई राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें सरकारी मुलाजिमीन, सिक्योरिटी अहलकार, मुंतखब नुमाइंदे, गैर मुल्की शहरी, गैर मुल्की सयाहों के साथ मौजूद नेपाली अफराद, मकामी बाशिंदे और पनबिजली के प्रोजेक्टों में काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं। इस दौरान सैलाब से मुतासिरा 11 पनबिजली प्रोजेक्टों से लापता होने वाले बहुत से अफराद का अब भी कोई सुराग नहीं मिल सका है, क्योंकि बचाव की कार्रवाइयों से अब तक महदूद नतायज ही हासिल हुए हैं। नेपाल की आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुताबिक रसुवा और नुवलकोट के भोटेकोशी और त्रिशूली दरियाओं से मुत्तसिल इलाकों में वाक़ 11 पनबिजली प्रोजेक्टों से वाबस्ता 983 अफराद की मौजूदा सूरत हाल के बारे में अब भी कोई जानकारी नहीं मिली है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा है कि भारत में अपनी मौजूदा 7 से 8% की शरह नमू से भी ज़्यादा तरक्की करने की सलाहियत मौजूद है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से

0: आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
1: Where India has learnings that can be shared elsewhere.
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है।

0: धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्स पर @AIR न्यूज़ हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज़ अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसू डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति

0: मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेट 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में जो हमारे आज की कलाकार हैं वो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से मानी जाती हैं। अपने असाधारण सुंदरता, फैशन के नए रुझानों और सहज अभिनय शैली के लिए जानी जाती हैं। सन 1960 और 1970 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्हें उनके आइकॉनिक हेयर स्टाइल साधना कट के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री साधना शिव दासानी की, जिनका आज जन्मदिवस है। और इस अवसर पे हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में और करेंगे उन्हीं से जुड़ी कई सारी रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं उनकी ही फिल्म से ये गीत।

प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में शिवरान शिव तसानी और लाली देवी के घर हुआ था। उनकी एक बहन सरला थी। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तकी साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया।

श्वेताओं, भारत के विभाजन के दौरान उनका परिवार कराची से पलायन कर मुंबई में बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 वर्ष की आयु तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे कई नाटकों में अभिनय करती थी, लेकिन जब परिवार का गुजारा मुश्किल होने लगा तो साधना ने परिवार का सहारा देने के लिए कोलाबा में टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह कॉलेज जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वे अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में आ गई। बचपन से ही उनका फिल्मों में करियर बनाने का सपना था और अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा थी।

सन 1955 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक सशाधर मुखर्जी की शिष्या बन गई। जी हाँ, सन 1955 में श्री 420 फिल्म में उन्होंने एक संक्षिप्त

भूमिका निभाई जिसके बाद वे सशाधर मुखर्जी की शिष्या बन गई, जिन्होंने उन्हें लव इन शिमला में कास्ट किया, जहां उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय हो गया और साधना कट के नाम से जाने जाने लगा। इस सफलता के बाद साधना ने परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, आरजू, वक्त और मेरा साया जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्रोताओं, साधना ना सिर्फ एक बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री थी बल्कि वो एक फैशन आइकॉन भी थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म लिव इन शिमला में भारतीय फिल्म उद्योग में फ्रिंज हेयर स्टाइल की शुरुआत की। फिल्म के निर्देशक और उनके भावी पति आर के नैयर ने उनके साथ उनके माथे को पतला दिखाने के लिए फ्रिंज हेयर स्टाइल का सुझाव दिया था। साधना कहती है उन्होंने हेयरलाइन के पास एक पट्टी लगाने की कोशिश की लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। इसके बाद नैयर ने उन्हें हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न की फ्रिंज हेयर स्टाइल को अपनाने का सुझाव दिया। फ्रिंज जल्द ही लोकप्रिय हो गया और 1960 के दशक में एक फैशन बन गया।

भारत में लड़कियों ने इस स्टाइल को अपनाया और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। यह लुक उनके द्वारा निभाए गए शरारती, सुंदर और ग्लैमरस सोनिया के किरदार पर खूब जचता था। लेकिन जब साधना बिमल रॉय की फिल्म परख की शूटिंग के लिए गई थी तो रॉय उनका आधुनिक लुक देखकर निराश हो गए। यहाँ उन्होंने जिस सरल ग्रामीण लड़की का किरदार निभाया था उससे मेल खाने के लिए उन्हें अपनी लटों को पीछे की ओर मोड़ना पड़ा। फिल्म जब उन्होंने मेरे महबूब में अलीगढ़ की एक साधारण मुस्लिम लड़की की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया तो साधना ने अपने प्रसिद्ध साधना कट को बदल दिया। उन्होंने अपने बालों के बीच से बांटकर चोटी बनाई थी जिसे निर्देशक H.S. रावल ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दर्शक उनका सिग्नेचर साधना कट देखना चाहते थे और इसकी मांग कर रहे थे। श्रोताओं, ये कट इतना फेमस हो गया कि कई साल बाद बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम और चांदनी चौक टू चाइना में इसी लट को अपनाया। साधना को चूड़ीदार कुर्ता का फैशन भी उन्होंने ही लाया और इस फैशन को लाने में उन्हीं को श्रेय दिया जाता है।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और चलिए हम संदेशों को पढ़ते हैं। जो हमारे पास पहला संदेश है वो है मेरठ से दिग्दर्शन कौर और कविता गौर का, और इनके साथ हैं इनके अन्य सदस्य। जो अगला संदेश है वो है धर्मेंद्र छिपा का, इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश आया गुरमीत सिंह का, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। प्रकाश वर्मा ने हमें संदेश भेजा, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। तुलसी मस्कीन हमें संदेश भेज रहे हैं, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। अगला संदेश है राधेश्याम देवांगन का, इनके साथ है चंपा देवांगन, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं भंवरपुर बसना से। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमें संदेश लिख कर भेज रहे हैं, अमर राम रमेश कुमार खत्री हमें लिख कर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं मास्टर किशन लाल खत्री, शंकर गुल। अगला जो संदेश है वो है अनिल मोहन का, और इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांडा से। श्रोता, जो अगला संदेश है देवशंकर टमुरिया का, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ है डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया।

अगला संदेश आया सुदर्शन मुखी का और इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भरत मकर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, बुराया, जालंधर से हमें संदेश भेजा है। फागुराम यादव ने हमें संदेश भेजा है, ये हमें लिख कर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। जो अगला संदेश है वो है इशक मोहम्मद का और साथ ही योगेंद्र नायक हमें लिखकर भेज रहे हैं, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से।

तो श्रोताओ, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेकर ठीक दिन के 2:30 पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज़। और आज मैटनी मेलोडीज़ में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान को याद अचानक नहीं आती। कोई धुन बजती है, कोई पुरानी शाम याद आती है और दिल चुपचाप पूछ बैठता है, कहाँ हो तुम। 1950s का दौर था जब मोहब्बत को कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती थी। एक नज़र, एक इंतज़ार और एक गीत, बस इतना ही काफ़ी था। ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत गीत है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। इस गीत में एक तरफ इंतज़ार है तो दूसरी तरफ उस इंसान को पुकारने की मासूमियत, जिसकी कमी ही दिल को महसूस कर रहा है। फिल्म पतिता का यह गीत 1953 में आया था और गीत को अपनी खूबसूरत शायरी दीदी हजरत जयपुरी ने संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने, और इसे अपनी दिलकश आवाज़ों में गाया हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने। हेमंत कुमार की गहरी मखमली आवाज़ और लता जी की कोमल आवाज़ जब साथ आती है तो ये गीत सिर्फ एक डुएट गीत नहीं रह जाता है, ये बन जाता है दो दिलों के बीच की एक बातचीत। तो आइए कुछ पल के लिए आज से निकलकर उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहां प्यार शायद थोड़ा धीमा था, इंतज़ार थोड़ा लंबा था, लेकिन एहसास बहुत गहरा था। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़। तो श्रोताओं, ये आप जो गीत सुनते हैं वो सुनते हैं 1950s 60s, यानी पुराने फिल्मी गीत। तो आपको ये गीत पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये हमें मेल करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपने खुले आसमान को वो देख कर सोचा है कि अगर ज़िंदगी में कोई खूबसूरत पल हो तो उसे बस वहीं रोक लिया जाए, ना कोई जल्दी ना कोई चिंता, बस खुला आसमान, साथ चलता कोई अपना और एक प्यारी सी धुन। 1950s के सिनेमा ऐसे ही छोटे छोटे पलों को गीतों में बदल देता था। आज का गीत भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें है खुला आसमान, प्यार की हल्की सी शरारत और ज़िंदगी की को बेफिक्र होकर जीने का एहसास। फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत साल 1955 में आया था। इसके खूबसूरत बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने और अपनी दिलकश आवाज़ दी थी गीता दत्त ने। तो आइए कुछ पल के लिए हम भी उस दौर में चलते हैं जहां आसमान नीला था, मौसम सुहाना था और मोहब्बत थोड़ी मासूम हुआ करती थी। तो सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, कहते हैं प्यार छुपाने से छुपता नहीं है, और जब प्यार थोड़ा नया नया हो तो फिर उसकी खबर सिर्फ दो लोगों को नहीं रहती, पूरी दुनिया को हो जाती है। ज़रा सोचिए वो दौर जब ना सोशल मीडिया था ना व्हाट्सअप, फिर भी मोहब्बत के चर्चे हर जुबान पर हुआ करते थे। 1960s का ये गीत प्यार की उस शरारत और बेफिक्री को बड़ी ही खूबसूरती से पेश करता है। फिल्म ब्रह्मचारी जो वर्ष 1968 में रिलीज हुई थी, उसमें शमी कपूर और मुमताज़ पर फिल्माया गया यह गीत आज भी सुनते ही माहौल को खुशगवार बना देता है। इस गीत के बोल लिखे थे हजरत जयपुरी ने, संगीत दिया था मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने, और अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत की सबसे खास बात है कि इसकी एनर्जी, मोहब्बत को लेकर वो बेफिक्र अंदाज़, वो मुस्कुराहट और वो चुलबुलापन जो 1960s के सिनेमा को अपनी एक पहचान थी। तो आइए उस सुनहरे दौर की इस शरारती मोहब्बत को महसूस करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। पुराने ज़माने के गीतों की बात ही कुछ और थी। कहते हैं प्यार करने से पहले दिल की सुननी चाहिए, लेकिन ज़रा ठहरिए, कभी कभी दिल से पहले दिमाग की भी सुन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस ज़माने में भी मोहब्बत करने वालों को चेतावनी दी जाती थी कि सोच समझकर दिल को लगाना, देखो बुरा है ज़माना। कितनी प्यारी बात है ना, एक तरफ प्यार की मासूमियत और दूसरी तरफ ज़माने का डर। और जब यही बात गीता रॉय यानी हमारी प्यारी गीता दत्त की आवाज़ में आती है तो उसमें एक अलग ही मिठास और शरारत महसूस होती है। तो आइए सुनते हैं गीता दत्त जी के दिलकश आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, सोच समझ कर करना प्यार। और इस गीत का संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं ये आप ज़रूर हमें मेल कीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहब्बत की। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जिनका कोई हिसाब नहीं होता, बस दिल किसी को अपना मान लेता है और फिर हर धड़कन उसी के नाम हो जाती है। लेकिन जब कोई पूछे कि ये जो एहसास है ये प्यार है या सिर्फ एक खूबसूरत सा ख्वाब, तो शायद जवाब यही है कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का फसाना। 1950 के दशक की फिल्म यहूदी का ये बेहद खूबसूरत सा गीत मोहब्बत की उस उलझन को बयां करता है जहां दिल खुद नहीं समझ पाता कि उसे क्या होगा, उसका क्या हो गया है। इस गीत को अपनी दिलकश और भावपूर्ण आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए कुछ पल के लिए उसी दौर में लौटते हैं जहां मोहब्बत को कहने के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाते थे। तो सुनते हैं यहूदी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैथिनी मेलोडीज, और कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव आ चुका है। समय का इशारा भी हो चुका है, लेकिन जाते जाते एक और बात, कभी कभी कोई हमारे बहुत करीब भी होता है और हमारे लिए एक राज बना रहता है। नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, बस एक एहसास है कि कोई है जो इस कहानी का हिस्सा है, और इसी राज को आवाज़ देता है 1960 के दशक का ये बेहद यादगार गीत, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। फिल्म गुमनाम का ये गीत अपनी धुन और बोलों के साथ आज भी एक रहस्यमयी माहौल बना देता है। इस खूबसूरत गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जय किशन का। तो आइए रोशनी थोड़ी धीमी करते हैं, रहस्य को थोड़ा और गहरा होने देते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म गुमनाम से लता जी की आवाज़ में।

गया। नशिस्त की सदारत पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने की, जबकि निजामत डॉक्टर अकील अहमद ने की। तकरीब में शहर की सरकर्दा अदबी व इल्मी शख्सियात ने शिरकत करके KL नारंग साकी की अदबी खिदमात और उर्दू जबान व अदब से उनकी वाबस्तगी को खराज अकीदत पेश किया। अपने सदारती खिताब में प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि अगर KL नारंग साकी आज हयात होते तो उनकी उम्र 90 बरस होती।

उन्होंने मुतअद्दिद शुअरा, अदीबों और अहले कलम की भी हौसला अफजाई की, उन्हें नवाजा और उनकी सरपरस्ती की। उन्होंने कहा कि नारंग साकी के इंतकाल के मौके पर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि उनके आखिरी सफर में उर्दू और हिंदी के अहल कलम और अदबी हलकों से वाबस्ता अफराद की तादाद बहुत कम थी। आज हम उनकी याद में जमा हुए हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आइंदा साल उनके योम विलादत को उर्दू और हिंदी के अदीब मिलकर बड़े पैमाने पर मनाएं और उनके फर्जंद संजीव नारंग को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया जाए। मुकर्ररीन ने कहा कि के एल नारंग साकी ने न सिर्फ उर्दू अदब से गहरा रिश्ता कायम रखा बल्कि अहल कलम की हौसला अफजाई की और अदबी सरगर्मियों की सरपरस्ती के जरिए दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब और उर्दू दोस्ती की रिवायत को भी मजबूत किया। नशिस्त के आखिर में उनके फर्जंद संजीव नारंग ने इजहार तशक्कुर पेश किया। समीन, गुज़श्ता दिनों मारूफ नावल निगार, शायर और अदीब राही मासूम रजा की सदी तकरीबात के सिलसिले में लेक्चर सीरीज के पहले खुतबे का इनेकाद उर्दू घर में हुआ। मारूफ समाजी कारकुन व दानिश्वर सुभाषनी अली ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि सदारत प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान क़िदवई ने की। मारूफ अदीब व पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे भी तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। सुभाषनी अली ने कहा कि राही मासूम रजा के नावल डॉक्टर बी आरजू का मुताला खासी अहमियत रखता है। इस नावल में जिस अंदाज से हिंदुस्तानी समाज और अपने अहद की हकीकतों को पेश किया गया है उससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राही मासूम रजा आला दर्जे के अदीब होने के साथ साथ आला मेयार के फिक्शन निगार भी थे। उनकी तरक्की पसंद और कम्युनिस्ट फिक्र उनकी तख्लीकात में नुमाया है और वो अपने नजरियात पर मजबूती से कायम रहे। उनकी तहरीरों में ख्वातीन के मसाइल, गुरबत, समाजी नाहमवारी, तंगदस्ती और तकसीम हिंद के असरात जैसे मौजूआत नुमाया तौर पर सामने आते हैं। उनके नज़दीक डॉक्टर बी आरजू सिर्फ एक नावल नहीं बल्कि समाज को समझने का वसीला भी है। उन्होंने अंजुमन तरक़ी उर्दू की जानिब से राही मासूम रजा की सदी तकरीबात के इनेकाद और डॉक्टर अतहर फारूकी की कोशिशों से राही से मुतालिक मजामीन की दोबारा इशात को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम उनकी अदबी मीरास को नई नस्ल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने सदी तकरीबात के इफ्तिताह पर अंजुमन तरक़ी उर्दू को मुबारकबाद देते हुए राही मासूम रजा की तखलीकत की इशात के फैसले को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि राही बुनियादी तौर पर उर्दू के अदीब थे लेकिन उनकी तख्लीकात हिंदी रस्म अल-खत में भी शाई हुई। उन्होंने इस पहलू को काबिल फख्र करार देते हुए कहा कि जबानों का कोई मजहब नहीं होता बल्कि जबान इंसानों को जोड़ने का जरिया है। राही मासूम रजा की अदबी शख्सियत उर्दू और हिंदी के दरमियान मौजूद उसी तहजीबी और लिसानी रब्त की नुमाइंदगी करती है। प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान क़िदवई ने सदारती खिताब में कहा कि राही मासूम रजा उनके नहायत करीबी थे और उनके बारे में गुफ्तगू करना उनके लिए खास अहमियत रखता है। उन्होंने राही को एक गैर मामूली इंसान करार देते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ मामलात में उलझने के बावजूद अपनी राह पर चलते रहे। उन्होंने अंजुमन तरक़ी उर्दू की जानिब से राही की मतबूआ और गैर मतबूआ तहरीरों को दोबारा मंजरेआम पर लाने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने बताया कि सदी तकरीबात के तहत अंजुमन में मुतअद्दिद जलसे और खुतबे मुनाकिद किए जाएंगे जिनमें राही मासूम रजा की शख्सियत, फिक्र और अदबी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अंजुमन तरक़ी उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतहर फारूकी ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि सदी तकरीबात का बुनियादी मकसद राही मासूम रजा की अदबी मीरास को असर नव अहल अदब और नई नस्ल के सामने पेश करना है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी राही की शख्सियत और फिक्र के मुख्तलिफ पहलुओं पर इल्मी व अदबी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नाजुक जैसे कंवारी कलिया होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलिया सामने इनके फीकी बाकी सारी

आँख शराबी तेरी है उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे आँख शराबी तेरी उसमें गुलाबी डोरे शर्म के मारे देखे गाल ये गोरे गोरे गोरे गोरे शर्म के मारे देखे।

这里广播电台，听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: 该特些是西梅塔不江的。
1: 听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार।
1: और अमीषा, आज हम अपने श्रोताओं के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैडमिंटन से, उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की, उसके बाद बात करेंगे महिला क्रिकेट की, उसके बाद बात करेंगे घरेलू क्रिकेट की, और उसके बाद बात करेंगे स्कूल क्रिकेट की भी, यानी कि क्रिकेट के हर सेगमेंट की हम बात करेंगे। उसके अलावा बात होगी स्क्वॉश की, टेनिस की और अन्य खेलों की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इस समय चल रहा है और कई अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें भारतीय संदर्भ

0: अगर हम बात करें तो वो आ रही हैं, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बहुत अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं। 750 रैंकिंग वाला ये टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट में जो भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए एक मौका है अपने रैंकिंग पॉइंट्स इकट्ठे करने का। साथ ही ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इसको जीतना चाहते हैं। तो क्या कुछ हुआ है अभी तक इसमें, क्या कुछ होने वाला है भारतीय संदर्भ में, अगर हम बात करें तो कितना अच्छा है या कितना थोड़ा सा निराशाजनक है, तो ये सारी बातें, इन सारी बातों पर ढेर सारी अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वो, और जो थोड़ी निराशा है उसके साथ एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाई है अमीषा ने, तो हम आपको सुनाते हैं।
1: अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो शेंजन चीन में खेले जा रहे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स 2026 में शुरुआती 2 दिनों के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं। यह एक BWF सुपर 750 श्रेणी का टूर्नामेंट है, जिसमें 12.5 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि और महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक दांव पर लगे हैं। आगामी एशियाई खेलों से ठीक पहले हो रहे इस आयोजन में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय खेमे के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत मिलीजुली रही, जहां कुछ अनुभवी खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं कुछ बड़े झटके भी लगे हैं। पुरुष एकल वर्ग में भारत के अनुभवी शटलर और पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के विश्व के 21वें नंबर के खिलाड़ी ची यूजेने को सीधे गेमों में 21-16, 21-15 से पराजित किया। मिक्स डबल्स कोर्ट में भी भारत के लिए अच्छी खबर आई, जहां ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी ने एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड के टोनकिड और टोनरुक की जोड़ी को महज 2 गेमों में 21-8, 21-9 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। वहीं महिला एकल में भारत की 17 वर्षीय युवा सनसनी तन्वी शर्मा ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कौशल का लोहा मनवाया। तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्स को सीधे गेमों में 21-16, 21-17 से हराकर मुख्य दौर में अपनी दावेदारी मजबूत की। भारतीय प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर पुरुष युगल वर्ग से आई है, जहां भारत की स्टार और चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की है। कोर्ट पर बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए इस भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कांग खाई शिंग को सीधे गेमों में 21-11, 21-16 से हराकर शान से अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि एकल वर्ग में भारतीय प्रशंसकों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले ही दौर में बाहर हो गए। लक्ष्य को कनाडा के विक्टर लाई के हाथों सीधे गेमों में 14-21, 7-21 से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावा पुरुष एकल में ही दीपक सिहाग और मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी की भारतीय जोड़ी भी अपने अपने शुरुआती मुकाबले हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं कल पुरुष युगल के एक मुकाबले में भारत को उस समय करारा झटका लगा जब MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की जोड़ी फिटनेस समस्याओं के चलते चीन के चेन वो यांग और ली यूई के खिलाफ पहले मैच में 8-11 से पिछड़ने के बाद मैच के बीच में ही रिटायर्ड हर्ट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की बात करें तो शेंजेन के कोर्ट पर कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। पुरुष युगल वर्ग में बड़ा धमाका करते हुए इंडोनेशिया के लियोरोली कार्नेंडो और डेनियल मार्थिन ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया के किम वोन हो और सियो सैंगजे की जोड़ी को सीधे गेमों में 21-19, 21-19 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं हाल ही में नई दिल्ली में विश्व चैंपियन बनी फ्रांस की मिक्स डबल्स जोड़ी थॉम गिकवेल और डेल्फिन डेल रू का सफर भी समाप्त हो गया है। उन्हें चीनी ताइपे की गैर वरीय जोड़ी ने महज 38 मिनट में 23-21, 21-10 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में चीन के स्टार खिलाड़ी शी यू की और सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो की यू के बीच खेला गया मुकाबला भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा।
0: चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट यानी कि चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की ये बेहतरीन रिपोर्ट आपने सुनी, और अब थोड़ी अपने दर्शकों को ले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर ढेर सारे क्रिकेट की गतिविधियां हो रही हैं। सबसे पहले बात

0: कर लेते हैं वुमेन्स T20 एशिया कप, और उसके बाद फिर बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी की, उसके बाद बात करेंगे DPL की, कई सारे क्रिकेट की बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महिला एशिया कप की, और महिला एशिया कप के कल खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें आमने सामने थीं। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 119 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद थाईलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में 84 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तान ये मुकाबला 35 रनों से जीत गया। वहीं श्रीलंका की टीम ने आज अपना मुकाबला खेलना है इंडोनेशिया की महिला टीम के सामने, और ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से आरंभ होगा। तो अमीषा, किस तरह का अभी तक एशिया कप रहा है?
1: जी, तो कल विमेन्स T20 एशिया कप में हमें पाकिस्तान का और थाईलैंड का मुकाबला देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम ने थाईलैंड को 35 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली थी। और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में पाकिस्तान ने सिर्फ 23 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जहां थाईलैंड की स्पिनर थिपाचा, जो जिन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए, और T20 फॉर्मेट में भारत की दीप्ति शर्मा को एक बार फिर पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज वह बन गई हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मुनीबा अली हैं, उन्होंने 52 गेंदों में 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 119 रनों के सम्मानजनक स्कोर, कह सकते हैं सम्मानजनक, उस पर पहुंचाया। और जवाब में 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की टीम पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिन आक्रमण के सामने टिक नहीं सकी। सादिया इकबाल ने घातक गेंदबाजी करके 4 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि तुबा हसन ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। थाईलैंड की ओर से केवल जो चनेदा हैं वे सर्वाधिक 25 रन बना पाई हैं, और पूरी टीम 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 84 रन ही बना सकी थी। वहीं मुनीबा अली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद ग्रुप ए के सूरत हाल जो हैं पॉइंट्स टेबल के, वो कुछ ऐसे हैं कि जो इंडियन विमेंस टीम है वह 2 अंकों और +4.700 पॉइंट्स के साथ, वह इस रन रेट के साथ वह पहले स्थान पर है, और पाकिस्तान 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अब इंडिया का अगला मुकाबला 3 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ होगा, जिसके ठीक बाद 5 सितंबर को इस एशिया कप का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर देखने को मिल सकता है, जो कि होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी, तो
0: बात आपने सही की कि हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम की, तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और यही कारण है कि कल जो मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने खेला उसमें भी उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं रही, और थाईलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम के सामने पाकिस्तान की टीम केवल 119 रन ही बना सकी निर्धारित 20 ओवर्स में। लेकिन भारत के साथ जब पाकिस्तान खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए तो कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है, और जिस तरह से उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, तो वो दर्शाता है कि भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ गई है, और आने वाले मुकाबलों में भी भारतीय टीम इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम पूरे एशिया कप की बात करें तो सबसे मजबूत दावेदार इस वर्ल्ड कप को जीतने की वो भारतीय महिला टीम है, और पहले मुकाबले में उन्होंने दिखा भी दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कितनी सक्षम है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और वहीं सक्षम तो टीमें दोनों हैं, ईस्ट जोन भी सक्षम है और साउथ जोन भी सक्षम है। अब ये मुकाबला होना है 6 सितंबर को, दो टीमें ऐसी हैं जो दिलीप ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची हैं, और सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के मुकाबले में ईस्ट जोन ने 4 विकेट से जीत दर्ज की, और नॉर्थ और साउथ के मुकाबले में साउथ जोन ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। और अब इन दोनों महत्वपूर्ण टीमों का मुकाबला 6 सितंबर को होगा, और ये एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें दिलीप ट्रॉफी के लिए जो हमारी टेस्ट टीम होती है, भारत की जो टेस्ट टीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिलीप ट्रॉफी उसके लिए।

0: इस दिलीप ट्रॉफी में जो प्रदर्शन होता है इसी के आधार पर अक्सर बहुत सारे खिलाड़ियों का चयन भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में किया जाता है। और अब ईस्ट और साउथ जोन की टीमें आमने सामने होंगी और साउथ जोन की टीम में एक अहम भूमिका निभाई तिलक वर्मा ने, उनको जिताते हुए जिस तरह से आगे बढ़ाया। और अब देखना यही होगा कि क्या साउथ जोन की टीम अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखती है या ईस्ट जोन, जिस तरह से वो आए हैं उन्होंने सेंटर को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई है, तो अब हमेशा ये है कि साउथ और ईस्ट के बीच में जो मुकाबला होगा उसमें कौन बाजी मारेगा, ये बड़ी बात है।
1: जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम एक नज़र डाल लेते हैं इंडियन टीम स्क्वाड का, जो T20 सीरीज़ जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट होगी उसके लिए चुनी गई है। ये 15 मेंबर स्क्वाड है जिसके जो कप्तान है वो श्रेयस अय्यर चुने गए हैं और यहाँ पे वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को बनाया गया है।
0: और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा जिस तरह से अपनी लय में हैं तो अच्छी बात है कि तिलक वर्मा एक बहुत ही सधे हुए क्रिकेटर हैं और उनको जिस तरह से उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है तो इससे उनका खेल और भी निखरेगा। तिलक वर्मा और उसके अलावा जो बाकी की टीम है उसके बारे में भी हम बता देते हैं कि और कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस टीम में। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके साथ ही श्रेयस अय्यर तो कप्तान है, अभिषेक शर्मा है साथ में, वैभव सूर्यवंशी जिनके लिए काफ़ी बातें हुई हैं कि वो बहुत ही बड़ा टैलेंट है तो उनको भी टीम में स्थान मिला है। संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। ये टीम है जो 3 T20 मुकाबले खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये सारे मुकाबले जो हैं दिल्ली के मैदान पर होने, और दिल्ली के मैदान पर आज एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है और वो मुकाबला है DPL का फाइनल महिला सेगमेंट का, महिला वर्ग का। आज DPL जो दिल्ली प्रीमियर लीग है उसका फाइनल मुकाबला है। हालांकि ये मुकाबला आज फाइनल है जिसमें नॉर्थ और साउथ दिल्ली की टीमें आमने सामने हैं, लेकिन उससे पहले कल भी ये दोनों टीमें आमने सामने थीं। अपने आखिरी लीग मैच में साउथ और नॉर्थ की टीमें आमने सामने थीं और एक लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ कल। आयुषी सोनी ने अर्धशतकीय पारी खेली जो नॉर्थ की कप्तान है, और उस लो स्कोरिंग मुकाबले में बाजी मारी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम ने। तो कहीं ना कहीं अमीषा ये बात तो कन्फर्म है कि आज जब वो ग्राउंड पर जाएंगे तो नॉर्थ के हौसले तो बुलंद होंगे साउथ के खिलाफ, क्योंकि वो अपना मुकाबला जीत के आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि विमेंस क्रिकेट के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने अधिक मैचेस होते हैं और एक्सपोजर लाइटों में अक्सर बॉयज़ को तो काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो मिल जाती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट में बहुत कम मुकाबले लड़कियों को मिलते हैं कि वो लाइट्स, अंडर द लाइट्स वो मुकाबले खेलें। तो ये जो लाइट्स में खेलने का अनुभव है, ये जो एक्सपोजर यहाँ पर मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसी की वजह से फिर धीरे धीरे धीरे धीरे यही खिलाड़ी आगे बढ़ के भारतीय टीम में भी पहुँचते हैं। और पिछले कुछ समय से जिस तरह से दिल्ली से बहुत सारे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही सेगमेंट में बहुत सारे खिलाड़ी भारतीय टीम तक पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ बहुत आवश्यक है और हम अक्सर उस बारे में बात नहीं करते हैं, और वो है स्कूल गेम्स। स्कूल गेम्स वो वाला पार्ट है जिसमें सभी बड़े खिलाड़ी

0: ही नहीं, इधर एक स्वाहिली या ऑल इंडिया रे।
1: गोबर की खाद ये भी जैविक खाद में ही आती है, तो जैविक रासायनिक दो तरह की खाद है, तो कौन सी कितनी और कब कब डालनी है तैयारी की बात करें तो।
2: ये खेत की तैयारी में वही बता रहा था मैं, तो जब हम पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 टन हमें प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद लेनी है। और किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान कर लें, जब गोबर की खाद लगाते हैं तो ट्राइकोडर्मा या बेवेरिया वेसियाना जो हमारे जैव बायोएजेंट हैं, बायोकंट्रोल एजेंट हैं, इनको आप मिला लीजिए। इसको मिलाने की विधि क्या है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें आप जो है 2 किलो प्रति एकड़ की जो है दर से, आप इसका पाउडर होता है, इसमें परजीवी होते हैं तो इनको ग्रो कराना होता है कल्चर में, तो इनको पहले आप जो है गोबर के साथ आप सुड़क दीजिए। इसके ऊपर आप जो है हल्के से टाट के बोरे डाल के उसको 7 से 8 दिन तक छाया में सुखाइए, ताकि जो बायो ट्राइकोडर्मा में जो जैव सूक्ष्म जीव हैं वो मल्टीप्लाई करके उसके साथ मिल जाएं और वो गोबर की खाद में ही बढ़ के वो पूरा ट्राइकोडर्मा से युक्त गोबर की खाद बन जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा और बेवेरिया जब आपके मिल जाते हैं तो दो चीज़ों का, एक तो ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है और दूसरा बेवेरिया वेसियाना हमारा दीमक और जितने भी कीट हैं उन सबका इंतजाम करता है, और आपका भूमि शोधन मृदा परिशोधन इसमें से हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इस पर और भी चर्चा करेंगे। एक फोन आ गया किसान भाई का। हेलो हेलो
3: जी,
1: नमस्कार
3: जी, नमस्कार जी, परमाल सिंह तिलखनी जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ जी।
1: जी परमाल भाई बताएं, क्या सवाल है
3: भाई साहब? आज पहले जो मैंने था ये ट्राइकोडर्मा काफी इस्तेमाल किया
1: जी,
3: लेकिन अब ज्यादा बारिश से या किसी कारण कोई वो जो लाल सड़न की बीमारी है

0: करना पूरा हो रहा है और वो बीमारी कहीं कहीं दिखाई दे रही है।
1: अच्छा देखिए
0: तो
1: परवाल
0: उसका फिर
1: जी
0: जी,
1: बताएं बताएं पूरी बात बताएं आपने।
0: और जैसे गन्ना बड़ा हो चुका है फिलहाल, वो जमीन में जैसे डाल के उसका वो करते शोधन भूमि का, वो तो वो भूनी पाने का, तो
1: नहीं
2: जी
1: नहीं जी
2: नहीं
0: कोई
2: हो पाएगा।
0: अच्छा तरीका बताएं साहब, वो नुकसान हो जाएगा फसल को।
1: देखिए परमाल जी

0: प्रयोग करने से आपको आपकी बीमारी का लाल
1: रेड
0: सड़न का रेड रॉट का कोई भी उपचार संभव नहीं है। पहली बात क्लियर है आपको समझा दें। अगर किसी भी दुकानदार के पास जाकर के कहता है कि साहब ये ले जाके डाल दो, वो कर दीजिएगा, जो उसने जितने जो भी आपके थावले हैं जिनको प्रभावित कर दिया है, वो थावले
1: जी
0: आपके अब ठीक नहीं हो सकते हैं। पहली क्लियर बात देखिएगा। आप इतना
1: जी
0: कर सकते हैं कि अगर एक कोई थावला है उसमें अगर आपका ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उस पूरे के
1: जी
0: पूरे क्लम्प को यानी थावले को उखाड़िए, और उखाड़ने के बाद में उसमें थायोफिनिट मिथाइल एक दवा आती है या ब्लीचिंग आता है, ब्लीचिंग पाउडर, उसको लेकर के वहाँ पर डाल दीजिए, जिससे कि वो आपका और पेड़ों में और जो थावले हैं उनको प्रभावित ना कर सके। लेकिन इस खड़ी अवस्था में और इस समय पे अब लाल सड़न रोग का कोई भी उपचार संभव नहीं है।
1: और लाल सड़न जो है
0: जी
1: एक फफूंद है जिसका इलाज संभव नहीं है, केवल रोकथाम, प्रिवेंशन,
0: रोकथाम
1: जो
0: है,
1: टीका
0: प्रिकॉशन
1: लगता है
0: है।
1: ना हमें, वैसे उसका
0: हाँ
1: संभव है। जैसे पोलियो का हमें टीका बचपन में लग जाता है तो तभी वो आगे तक काम
0: जी
1: करता रहता है, उसी प्रकार से ये लाल सड़न रोग भी है। इसका केवल उपचार यही है कि आप जैसे अपना फसल चक्र का सही चुनाव करते रहें, कि आप लोगों क्या बार बार गन्ना जो एक ही खेत में बोया जाता है
0: जी
1: उससे इसके रोकथाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगली बार से आप निश्चित, मैं तो ये कहूंगा कि 1-2 साल आप इसमें आप गन्ना ना
0: गन्ना न
1: बोएं,
0: लें, उसमें गन्ना
1: आप
0: ही न
1: कोई
0: लें।
1: अन्य फसल इसमें ले लें ताकि फसल चक्र छूटे, मिट्टी में आपके जो लाल सड़न के स्पोर्ट्स रह गए होंगे वो दोबारा जर्मिनेट ना कर पाए, 2 साल बाद आप इसमें दोबारा से गन्ने की फसल को चुनें।
0: ठीक है
1: तो
0: सर,
1: परमाल
0: ठीक
1: भाई,
0: है
1: अभी जैसे डॉक्टर
0: जी
1: साहब ने बताया है ना कि जितने हिस्से में, अगर थोड़े हिस्से में है तो फिर तो आसान है, आप उसको निकाल के नष्ट कर दीजिए जैसे दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है उसके द्वारा, और ज़मीन में भी वो दवाई डाल दें। और डॉक्टर दुबे ने
0: नहीं, दूसरा
1: बताया
0: ये भी है कि अगर आपका लगता है कि अभी जैसे चारे की शॉर्टेज चल रही है, उस क्लम्प को उखाड़िएगा, चारे में खिला दीजिए, अभी आप चारे में चल जाएगा आपका।
1: हाँ, लेकिन वो जमीन का उपचार तो अभी भी
0: हाँ,
1: करना ही
0: जमीन का
1: पड़ेगा,
0: उपचार तो करना होगा अगर आपको उसको, देखिए
1: रोकना
0: वैसे
1: है तो।
0: सामान्यतः ये होता है कि जुलाई अगस्त में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: पानी
1: जी
0: फ्लड होता है
1: हाँ जी
0: ना,
1: हाँ जी जी
0: तो इसके जो फंगस है ये एकदम एक से दूसरे क्लम्प में चला,
1: जल्दी जल्दी
0: थावले में
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है,
1: जी।
0: तो ये बीमारी जिसको प्रभावित करनी थी वो कर चुकी है। अब इसका इंसिडेंस जो है वो आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिनमें फैल चुका है उनको अब ठीक नहीं किया जा सकता है।
1: तो परमाल भाई देख लीजिए आप, जैसा आप कर पाए वो डॉक्टर साहब ने तरीके बता दिए आपको, और आगे के लिए भी अगर ज़्यादा संख्या में पेड़ आपके पौधे प्रभावित है तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि 1-2 साल के लिए आप गन्ना मत
0: हाँ,
1: लीजिए इस
0: गन्ना
1: खेत
0: मत
1: में,
0: लीजिए उसमें।
1: दूसरी फसल लीजिए, उसके 2 साल के बाद फिर गन्ना दोबारा शुरू कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब रासायनिक खाद पे था चर्चा हमारी, हाँ, तो हम लोग थे कि ट्राइकोडर्मा के
0: तो
1: माध्यम से हम भूमि
0: जी
1: शोधन शुरू करवा देते हैं। तो
0: जी
1: भूमि शोधन आप गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से लगा ही रहे हैं, साथ ही आप ट्राइकोडर्मा बेवेरिया लगा दीजिए, तो जिससे आपकी दीमक की समस्या, और भी जो किसान भाई बता रहे थे कि फंगस की रेड रॉट की समस्या है,
0: जी
1: तो उसका भी एक ही इलाज है, भूमि शोधन, बीज शोधन, क्योंकि ये सब फंगस हैं। आप अगर एंटी और प्रतिरोधक प्रजातियाँ, जो भी रेड रॉट को प्रतिरोधक प्रजातियां हैं, वो अच्छी गुणवत्ता की प्रजातियां, और उसमें भी बीज हमारा कहीं अच्छी जगह से हो, जहां से विश्वसनीय जगह से हो।
0: डॉक्टर साहब जो किस्में बताई हैं इसमें प्रतिरोधक प्रजातियां हैं क्या जो किस्म?
1: आज जो भी हमने प्रजातियां बताई हैं सभी प्रतिरोधक हैं, क्योंकि एक
0: अच्छा
1: बहुत बड़ा इंसिडेंस पैंडेमिक मान लीजिए आया था कि
0: हाँ
1: 235 जो प्रजाति सबसे कॉमन थी, 238 सबसे कॉमन थी,
0: जी जी
1: उसमें ही
0: जी
1: सबसे ज़्यादा ये हुआ कि रेड रॉट की समस्या आई। तो इसी सबसे का बीमारी को हटाने के लिए जितनी भी प्रजातियाँ डेवलप हो रही हैं वो उसमें सब जेनेटिकली मॉडिफाई करके रेड रॉट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए ही हो रही हैं। पर अभी समस्या क्या है कि भूमि में जिनके स्पोर्ट्स रह गए हैं ट्राइकोड फंगस के, वो
0: जी
1: वहाँ से डेवलप होके किसी नई प्रजाति में भी कभी कभी देखने को मिल रही हैं।
0: तो इसके लिए
1: वो
0: भी जो आपने इसमें ट्राइकोडर्मा का वो बताया वो
1: इसमें कहने
0: करें। का मतलब यह है कि वैरायटी तो सारी रेजिस्टेंट है, जी
1: लेकिन उसका एनवायरनमेंट और उसके ग्रो का सिचुएशन क्या है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। वो आप कोई इन्फेक्टेड आपका एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके वातावरण में स्पोर्ट्स, उसके फंगस घूम रहा है, उसका सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर है, या उसके जब होता क्या है कि कभी कभी आप सीड कहीं से लेके आए, वो वहाँ का सीड जिससे आपने गड़ा से इसको काटा है उस वो प्रभावित है, तो वो उसमें फैलता चला जाएगा। तो इसको कैरी ऑन का जो कैरियर होता है ये इसके कई एक साधन है, लेकिन अब वो वैरायटी का क्या किया जाए जो पहले से ही, अब जैसे सपोज कि ये परमाल जी बता रहे थे कि
0: जी
1: हमारी में है, अब इस खेत में कोई नई दूसरी वैरायटी भी आप उदाहरण के रूप में लेके आते
0: तो
1: हो
0: उसमें भी हो
1: तो
0: जाएगा।
1: निश्चित रूप से वो वैरायटी प्रभावित है। भाई 0238 वैरायटी क्यों फेल हुई?
0: जी जी
1: 0238 वैरायटी

0: फेल होने के पीछे मकसद एकमात्र केवल यही रहा कि पूरे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या आपने देखिएगा इसमें के कारण ही ये वैरायटी फेल हो गई, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्रभावित था। इसी तरह से पहले एक वैरायटी हुआ करती COJ64 हुआ करती थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, चीनी रिकवरी बहुत अच्छी आती थी। वो भी वैरायटी रेड रोड की वजह से वैरायटी अपने किसानों के खेतों से गायब हो गई। और जो प्रोडक्शन आपने देखा होगा पिछले साल गन्ने का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ, उसके पीछे जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत है उसमें मैक्सिमम एरिया के अंदर COSA 0238 वेराइटी थी, और ये वेराइटी में बीमारी आने की वजह से किसानों का उत्पादन घटा और घटने की वजह से पैदावार।
1: डॉक्टर साहब अभी इसी कार्यक्रम में थोड़े दिन पहले की बात है, वहाँ बात हुई तो एक किसान का फोन आया तो उसने कहा कि मैंने लगा रखी है, अभी भी लगा रहे हैं किसान,
0: अभी भी लगा रहे हैं,
1: है ना।
2: तो जहाँ पे जिस क्षेत्र में अभी रेड रोड की समस्या नहीं आई है किसानों को तो वो तो लगा ही रहे हैं 200
1: जी जी,
2: लेकिन जहाँ क्षेत्र में आ गई है तो वहाँ क्या है कि मिट्टी में जैसे आ जाती है ना फंगस, ये तो मिट्टी से निकल पानी बड़ी संभव है जब तक हम फसल चक्र को चेंज नहीं करते। दूसरा किसान भाई इसमें बीज शोधन जरूर करें, बीज शोधन में भी
0: गन्ने में नहीं होता है जो नहीं करते ज्यादातर।
2: हाँ
1: तो बीज शोधन की बात डॉक्टर साहब आपने शुरू कर दी है तो मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि भूमि शोधन तो बता दिया है, अब भूमि शोधन के बाद बीज शोधन कैसे करें, क्या तरीका है, इस तरह से कर
2: देखिए। अभी हमने जैसे आपने गोबरी खाद अच्छे से मिला दी, उसके बाद आप खेत को बराबर लेवल कर लें, ये देखें पानी कहीं आपका रुकने ना पाए, और भारी एवं उपजाऊ मिट्टी अगर आपकी है तो ट्रेंच विधि से आप इसमें बुआई करें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बीज शोधन की। बीज शोधन के लिए कोई भी आप बेवस्टीन, थीरम, कार्बेंडिजीन, मैनकोजेब, कोई भी अच्छा फंजिसाइड लेके आप इसका बीज शोधन कर सकते हैं। 0.1% की मात्रा होती है उसमें, उस हिसाब से आपको करना है। विशेष बात ध्यान किसान भाई ये रखें कि जो भी आंख हैं वो निकाल के उसमें जब स्प्रे वाली मशीन होती है उससे टंकी से दूर से स्प्रे कर देते हैं और केवल उसको जाके बो देते हैं। तो उसमें एक बात ध्यान रखिए कि जरा सा पानी संपर्क में आपके बीज में आता है और ढंग से शोधित नहीं हो पाता
1: जी।
2: तो उसमें ध्यान रखिए या तो आप नालियों में बीज डाल के उसमें पानी चला दें, वहां पर आप दवाई लगाएं ताकि कम से कम 20 से 25 मिनट आपका जो आंख है हमारी
1: डूबा रहे है,
2: वो डूबा रहे, वो दवाई को पी जाए, वो तभी उसका उसमें शोधन अच्छे से हो पाता है। तो पूर्ण तरीके से अच्छे से जो है शोधन इसका करने के लिए, या फिर आप कहीं कुंडी में या किसी भी अन्य स्थान पर
1: टैंक बड़ा टैंक जो है
2: में आप जो है शोधित करें, 25-30 मिनट उसको डुबो के रखें, अच्छे से दवाई उसमें अंदर चली जाए, उसके बाद ही उसको जो है बुआई करें।
1: तो इस तरह से आपको, हाँ डॉक्टर,
0: इसमें एक किसान को, किसानों को
1: डॉक्टर साहब फोन आ गया, पहले फोन लेते हैं फिर चर्चा करेंगे,
0: फिर फोन जी हमारे किसान
1: जी। हेलो
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: अशोक कुमार।
1: आवाज कट रही है जी आपकी, थोड़ा बदलो, थोड़ी साइड बदलो या बाहर आ जाओ।
3: हाँ बाहर बैठा हूँ।
1: हाँ बताइए बताइए, नाम बताइए।
3: अशोक कुमार।
1: हाँ जी अशोक भाई बताइए क्या सवाल है।
3: सवाल मेरे ये लग चुका है।
1: हाँ जी
3: सितंबर लग चुका है।
1: हाँ
3: तो जो ये सितंबर हो जाती है एक ये कालीन वाली, तो कब से बो सकते,
1: कौन सी किस्म के बारे में पूछ रहे हो?
2: कब से बो सकते
1: हैं? कब से बो सकते हो? अच्छा तो ये
2: अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, अभी
1: हो सकता लेट खोला।
2: हाँ ये जो आपकी जो है शरदकालीन जो है हमारे पास गन्ने की बुआई है, इसके बुआई का सही समय, बिल्कुल सही समय आ चुका है और हम सही समय पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। 1 तारीख से बुआई, 1 तारीख से हम लोग खेत की तैयारी शुरू कर देते हैं और बुआई का समय 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में सही समय है इसकी बुआई का।
1: तो अशोक भाई 15 तारीख से शुरू हो जाएगा टाइम, लेकिन जो हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं उससे पहले आपको खेत तैयार करना है, बीज भी इकट्ठा करना है, कहाँ से लाना है।
0: अशोक भाई एक आपसे मेरा एक ये भी अनुरोध रहेगा, जो भी हमारे किसान भाई गन्ना बुवाई करेंगे शरद काल में, कि एकल गन्ना नहीं बोना है। मतलब ये हमारे सभी जितने भी श्रोतागण इस बात को हमारे आज के कार्यक्रम सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि शरद काल में अगर हमको गन्ना बोना है तो एकल गन्ने की खेती नहीं करनी है,
1: यानी
0: सहफसली खेती करेंगे। अगर आप एकल गन्ना करते हैं तो आर्थिक नुकसान आपके साथ साथ पूरे देश का भी आर्थिक नुकसान है, क्योंकि वो उसके पीछे कारण है। गन्ना हमारी लगभग 10 से लेकर के 12 माह की फसल है और अपने नॉर्थ के अंदर, उत्तर भारत के अंदर लगभग 2 महीने का से लेकर के 3 महीने का ऐसा समय होता है जिसमें गन्ना सुषुप्त अवस्था में रहता है, और उस सुषुप्त अवस्था में अगर आप कोई दूसरी उसके साथ में सहफसली खेती कर लेंगे तो वो आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी और आपके लिए आर्थिक रूप से आपको पैसा देके जाएगी। इसलिए गन्ने के साथ में सह फसली खेती अशोक भाई जरूर करें।

0: सब बात ये आती है कि कौन कौन सी फसल लगाएं।
1: देखिए, शरतकालीन गन्ने के साथ में बहुत सी खेती करने के वो हैं। आपको निर्धारित आपको ये करना है कि आपका एरिया कैसा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन कैसे हैं, आपकी मार्केट कैसी है, और साथ ही साथ में आपकी सप्लाई चेन कैसी है। आप मतलब वहाँ से अपने जो सब फसल जो उत्पाद है उसको कैसे हम बेच पाएंगे। मैं आज सबसे पहले कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा अभी इस समय देखेंगे तो फूलों का बहुत अच्छा चलन चल रहा है, फूलों की मार्केट इतना अच्छा डेवलप कर रही है। तो गन्ने के साथ में अगर सब फसली खेती करते हैं और ट्रेंच मेथड से अगर आप गन्ना बोते हैं तो उसके साथ में ग्लैडुलस हमारा बहुत अच्छा दे सकता है, उसके साथ में मैरीगोल्ड है, गेंदा है, बहुत अच्छी आपको उत्पादन दे सकता है। तो ये दो ऐसी फसलें हैं जो किसान के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। और कुछ किसान हमारे ऐसे जरूर हैं मेरी जानकारी में कि जो गन्ने से अच्छा उत्पादन इन सह फसली खेतों से ले लेते हैं।
0: तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो शरदकालीन गन्ना लगाना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि गन्ने के साथ साथ आप दूसरी कोई फसल लेके एक अतिरिक्त आमदनी का साधन जरूर बनाएं।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
4: हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तक जारी रहेगा। समाचार पश्चात भी आप फोन कर सकेंगे।
5: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। CEO ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शेखोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने

0: तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्कालजेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साह को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जैसा कि आपको पता है और अनवरत जारी है हमारा फोन इन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो आज का हमारा विषय है, आपको बता दें शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, जो कि प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे, जो कि गन्ना वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से। शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342-1082, दूसरा नंबर है 2342-1083। दिल्ली से बाहर के लोग कोड लगाना ना भूलें, कोड है 011। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे

0: साथी नरेश पाराशर जी। तो चलते हैं स्टूडियो की तरफ।
1: विशेष फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर दुबे जी, आप दोनों का पुनः हम स्वागत करते हैं। और बहनों भाइयों, जैसा यमुना बहन ने अभी बताया कि फ़ोन नंबर हैं, कोई गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या हो, अभी जो फसल खड़ी है उसकी भी अगर कोई है तो भी पूछ लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। बाकी शरदकालीन गन्ने की आप बिजाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोई खास जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। और मैं नंबर बताने वाला था डॉक्टर साहब, ये फ़ोन आ ही गया है किसान भाई का, देखते हैं कौन है। हेलो,
2: हाँ
1: राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हाँ, मैं राम कुमार किसान बोल रहा जी, बागपत जिले का।
1: राम कुमार जी, गांव का नाम क्या हुआ?
2: गांव का नाम मोबीकला है जी।
1: अच्छा, मोबीकला जी, बताएं।
2: हाँ, पूछना ये है जी, जैसी बात इंटरक्रॉप की चली।
1: हाँ जी,
2: अब हम आपका बोना चाह रहे यही शरदकालीन करना।
1: जी जी,
2: तो हम ये पूछना चाहते हैं कि प्याड़ी सरसों अगर बोते हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ती और पौधों पर गिरेगी नहीं तो वो कैसी रहेगी?
3: सरसों, पीली सरसों कह रहे हैं क्या, कैसे सरसों कह रहे हैं? नहीं, सरसों तो देखो ऐसा है कि अगर आप टाइम से गन्ना बो रहे हैं, सितंबर के लास्ट तक भी बो रहे हैं और या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक भी बो रहे हैं, तो सबसे आसान है कि अगर आप फूलों की खेती नहीं कर सकते, आलू नहीं कर सकते, मटर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे साधारण तरीका है कि आप उसके अंदर सरसों बो दीजिएगा। हाँ, तो सरसों आप बो देंगे और सरसों कोशिश करिएगा कि गन्ने की दो लाइनों के बीच में एक लाइन सरसों की आप डालें उसके अंदर, ठीक है? हाँ, दूसरा एक ये भी ध्यान रखें कि बीज कम डालें और ज़्यादा घना बीज न बोएं। अगर ज़्यादा सरसों, क्योंकि सरसों का जमाव जल्दी होता है, अच्छा होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा घनी सरसों हो जाए, घिनगी हो जाए आपकी भाषा में, बागपत की भाषा में, तो उनमें से बीच में से सरसों को निकाल करके पशुओं को खिला लीजिएगा और फासला कम से कम एक बिलस्त का पौधे से पौधे का जरूर रखें।
2: ठीक है जी, बिल्ली बोएंगे।
3: हाँ, और गन्ने के साथ में जो आप डालेंगे ही, लेकिन सरसों जब आप बो रहे हैं तो उसके साथ में सल्फर का प्रयोग जरूर करें आप। हाँ, एक किलो का बीघा आप सरसों उसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप उसमें सल्फर डालते हैं, तो उस गन्ने के साथ साथ में सरसों की पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी और सरसों का दाना मोटा होगा, वजन बढ़ेगा।
2: हाँ, ये आईपीएल वाले पोलियोलाइट का बहुत जिक्र कर रहे हैं जी, तो बुआई में पोलियोलाइट भी बोल दें हम डाई के साथ?
1: हाँ जी,
3: पोलियोलाइट का हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप एक तजुर्बे के रूप में थोड़े से खेत में करके आप प्रयोग करके देख सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप?
2: हाँ।
1: राम कुमार जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और कोई शंका हो आप पूछ सकते हैं,
1: फोन कर सकते हैं आप, फिर दोबारा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो
3: आप रामपाल जी, प्रजाति कौन सी बोना चाह रहे हैं?
1: कोटिया जी, हेलो।
2: वैसे 15233 है जी मेरे पास।
3: 15233 है आपके पास में? कहाँ से? सुगर मिल से मिला है? तैयार है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखें कि ऊपर का 1/3 हिस्सा ही बुवाई में इस्तेमाल करें, नीचे का कोलू पे आप उसका वो बनवाएं, गोड़ बनवाएं।
2: ऐसे ही कर लेंगे। हाँ,
3: दो आग का गन्ना बोएं और वो 1/3 हिस्सा बुवाई में इस्तेमाल करें, ठीक है रामपाल जी?
1: राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। बहनों भाइयों, फोन नंबर एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर शरदकालीन गन्ने की बिजाई से संबंधित कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन इन नंबरों पे कर सकते हैं, 23 42 10 82 23 42 10 82, 23 42 10 83 23 42 10 83। दिल्ली के नंबर हैं, स्टूडियो के लैंडलाइन हैं, तो दिल्ली के बाहर से आप बात कर रहे हैं या मोबाइल से आप बात करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों से पहले 011 ज़रूर लगाइएगा, उसके बाद ये नंबर डायल कीजिएगा, सीधे हमसे जुड़ेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर दुबे जी, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, डरिए मत, कीजिए फ़ोन। तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी पर चर्चा थी, आपने बताया कि भाई गोबर की खाद में जो है ट्राइकोडर्मा मिलाना है, उससे आपका भूमि का शोधन हो जाएगा
4: जी।
1: इसके अलावा और कौन कौन सी खाद की आवश्यकता पड़ेगी डॉक्टर साहब?
4: आपने गोबर की खाद मिला ली, ये तो हो गया जैविक रूप से। अभी हम जो बात करते हैं वो INM पे करते हैं, वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी पोषक तत्व तो हम जैविक और रासायनिक दोनों का
1: दोनों
4: करके करते हैं, आगे करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है आजकल, दोनों चीजों का मेंटेनेंस हमें करना है।

0: अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पहले तो मृदा परीक्षण करा के अपने जो मिट्टी है जिस खेत में हम बुआई करने जा रहे हैं उसके पोषक तत्वों की वर्तमान स्थिति की जांच हमारे करा लेनी चाहिए, कितना इसमें नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस पोटेशियम है और हमें अगली फसल के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है। वैसे अमूमन जो है, जो नॉर्मल रूप से हम लोग देखते हैं, तो गन्ने में 1 हेक्टेयर के लिए 180 किलो से 200 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है हमको, लगभग 80 किलो फास्फोरस की आवश्यकता है और 60 किलो या 70 किलो हमें पोटाश की आवश्यकता है।
1: ये तो आपने मोटा मोटी बता दिया कि इतनी की जरूरत पड़ेगी,
0: जी
1: लेकिन जैसा आपने डॉक्टर साहब पहले कहा था कि एक बार भूमि की जांच जरूर करा ले तो उससे सभी तत्वों के बारे में पता चल जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: हेलो हेलो,
2: डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब,
1: नमस्कार जी,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: सर
1: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मोहर सिंह बोल रहा हूँ जी, बुलंदशहर।
1: मोहर सिंह जी,
2: सर
1: बताइए क्या सवाल है?
2: गन्ना के बारे में मालूम है ना, कौन सी प्रजाति जिसमें शुगर भी ठीक हो और जो खाने में भी थोड़ा मुलायम हो, उस प्रजाति के बारे में बताओ।
3: देखिए मोहर सिंह जी, अभी हमारे ये मैं समझता हूँ शायद आपने कार्यक्रम देर से सुनना शुरू किया है। हमने सर्वसर कार्यक्रम के शुरुआत में ही गन्ने की काफ़ी प्रजातियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हाँ कोयम्बटूर की एक प्रजाति 0118 के बारे में की थी, जो काफ़ी आप लोगों के एरिया में ज़रूर होगी। कोसा 13231 के बारे में चर्चा की थी, कोसा 13235 है, और एक नई प्रजाति और आई है कोसा 17231। ये प्रजाति भी अच्छी है, आपके अगर मिल क्षेत्र में कहीं मिल जाती है तो इसकी बुवाई कर सकते हैं। और लखनऊ कोयम्बटूर लखनऊ की प्रजाति है 14201, जो पिछले 4-5 साल से अच्छी प्रजाति चल रही है। तो ये मतलब अगेती की प्रजातियां हैं, जिनमें अगेती से मतलब है जिसमें चीनी का पड़ता ज़्यादा आता है, जिसको शुगर मिल आपका महंगे रेट में आपसे गवर्नमेंट इसका रेट ज़्यादा 10 रुपये 15 रुपये ज़्यादा रखती है। तो इनमें से कोई सी प्रजाति देख सकते। देखिए अच्छी प्रजाति से मतलब ये होता है कि वो प्रजाति में 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, कि वो प्रजाति रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता हो, दूसरी बात है उसकी चीनी का रिकवरी है वो जल्दी आती हो, तीसरा मुख्य बिंदु है उसकी पेड़ी अच्छी होती हो, बाबक के साथ साथ उसकी पेड़ी भी अच्छी हो, फुटाप पेड़ी का अच्छा हो। पेड़ी मतलब आपने अगर नवंबर में काट रहे हैं या दिसंबर में काट रहे हैं, उसके बावजूद भी पेड़ी का फुटाप अच्छा फूट जाए, केवल दिसंबर लास्ट में या जनवरी के महीने में हमारी गन्ना की पेड़ी नहीं फूटती है। तो ये अगर खासियत, ये
2: अक्टूबर में
3: प्रजाति
2: बोना चाह रहे हैं हम उसके सरसों के साथ में।
3: हाँ सरसों के साथ में बोते हैं, तो अक्टूबर मेरा आपको सुझाव है कि 15 अक्टूबर के आसपास तक जरूर बोलें। अगर आप लेट करते चलाए चलेंगे तो उससे होगा क्या कि हमारी सरसों भी लेट से कटेगी, और जब सरसों लेट से कटेगी तो गन्ना, क्योंकि गन्ना सर्दी में बड़बार उसकी रुक जाती है, सुषुप्तावस्था में चला जाता है, और जैसे ही आप सर्दी शुरू होगी फरवरी 15-20 फरवरी मार्च के बाद में, मार्च की शुरुआत में, वैसे ही गन्ना बड़बार करेगा, और उस समय तक अगर आपकी सरसों नहीं कटी होगी तो गन्ने के ब्यांत पर प्रभाव बड़बार पर और ब्यांत पर फर्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि 15 अक्टूबर के आसपास तक हम गन्ने के साथ में अगर सरसों बोनी है तो उस समय तक इससे बुवाई कर लें, क्योंकि गन्ना जो सरसों है हमारी सामान्यतः 120 दिन की 125 दिन की फसल है, उस समय तक वो हमारी फसल सरसों की कट जानी चाहिए।
2: सर आपने हिसाब से हमें खाद और दवाई के बारे में और बता दें थोड़ा सा।
3: देखिए खाद के बारे में अभी हमारे साथी में स्टूडियो में जो डॉक्टर अश्वहर थे उन्होंने बताया था कि सामान्यतः गन्ने के साथ में 150-180 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम 75-80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है तत्व के रूप में। अब इसको अगर DAP के रूप में दे रहे हैं या NPK 12-32 के रूप में दे रहे हैं तो
2: डीएपी
3: उसके
2: दे रहे हैं जो डीएपी है हमारे पास में।
3: DAP अगर आपके पास में है तो लगभग आप मोटे मोटे तौर पर अगर आपकी की भाषा में हम एक बात करें तो लगभग 15 किलोग्राम तक एक बीघे में आप DAP दे सकते हैं। हाँ और इसके साथ में लगभग आप 5 किलोग्राम पोटास और इसके साथ में मिला लीजिएगा। ये सारी की सारी मात्रा गन्ने की बुवाई के समय पर ट्रेंच मेथड से बो रहे हैं या ओपन फरो से बो रहे हैं, ये गन्ने के खूंड में जो आपका कांची डालेंगे जहाँ गन्ने का टुकड़ा डालेंगे उसके नीचे डाल करके उसके बाद में गन्ने का टुकड़ा बुवाई करेंगे।
2: डॉक्टर साहब सल्फर भी ले लें कुछ साथ में क्या इस खाद?
3: अगर सल्फर, देखिए सल्फर अगर आप ही ले लेते तब भी ठीक है, या सल्फर को गन्ने के, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब आपके गन्ने का बढ़वार गन्ने का जमा पूरा हो जाता है

0: लगभग 15 से 20 दिन के बाद में हो जाता है। और जब पहली यूरिया की ट्रॉप ड्रेसिंग करते हैं उस समय भी आप सल्फर को मिला करके दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो बिजाई के समय पर भी हम आप उसमें जिंक सल्फेट या सल्फर,
1: सल्फर अगर हम बाद में लगाएंगे तो सर सरसों में तो फायदा देगा वो हमें?
0: हाँ देखो, अगर आप छिटक करके दे रहे हैं पूरे खेत में बिखेर करके, देखिए यूरिया के साथ में मिला के वो करके दे रहे हैं, यूरिया की तरह से बिखेर के दे रहे हैं, तो आप सरसों को भी अगर उसमें बो रहे हैं तो सरसों की भी उसमें सल्फर शामिल होगी। आप गन्ने के साथ साथ में सल्फर उसमें मात्रा बढ़ा करके देंगे, या नहीं कि आप 1 किलो का बीघा डाल दें या कम मात्रा दे दें तो सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए इसको भी ध्यान में रखें कि सल्फर की मात्रा को बढ़ा करके देंगे, क्योंकि सल्फर जो है वो तेल वाली फसल ज़्यादा कंज्यूम करती है, ज़्यादा मात्रा में लेती है।
1: हाँ, उसी के लिए देख रहे हैं सर, सरसों के लिए, सल्फर के लिए ना।
0: और 2 आंख का टुकड़ा काटें, गन्ने की जो बुवाई करें वो 3 आंख का टुकड़ा ना लें, 2 आंख का लें और 1/2
1: बड़ा टुकड़ा काटे, मतलब
0: नहीं छोटा,
2: 2 आंख का,
0: 2 आंख का, 2 आंख का, 2 आंख।
1: अच्छा, 2 आंख।
0: हाँ, दो जो जो जिनसे गन्ने का जमाव होता है उनको आंख बोलते हैं, तो 2 आंख का टुकड़ा रखें। हाँ, 2 आंख का टुकड़ा रखें और क्या कहते हैं कि ऊपर से 1/3 हिस्से का गन्ना काटें, बुवाई बीज के लिए चयन करें। हाँ ठीक है,
1: नीचे वाला ना,
0: नीचे वाला, हाँ नीचे वाला न लें, नीचे वाला न लें उसको आप, और गुड़ बनाने में या सोम मिल में इस्तेमाल, हाँ क्रेशर वगैरह पे दीजिएगा, नीचे का जमाव नहीं होगा, वो आपका नुकसान होता है उसमें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मोहर भाई आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब मोहर सिंह जी ने जो सवाल पूछे ना, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि हम सह फसली की बात कर रहे हैं, दूसरी फसल भी लगा रहे हैं। डॉक्टर दुबे ने बताया कि ये हमें गन्ने में खाद की, रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी। मान लो सह फसलीकरण कर रहे हैं जिसमें सब्जी वाली फसल लगा रखी है, या आपने बताया कि तिलहनी में तो ज़्यादा सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी।
0: हाँ।
3: तो जो दूसरी फसल लगाएंगे उसके लिए क्या अतिरिक्त रासायनिक खाद की जरूरत पड़ेगी?
2: आवश्यकता है, पर अभी हम लोग जो रिकमेंड करते हैं ना, अगर हम रोटावेटर की जुताई करने से पहले खेत में ब्लैंकेट एप्लीकेशन करते हैं खाद का, तब तो हमें एडिशनल 10 से 15% खाद की आवश्यकता पड़ सकती है अगर हम दूसरी फसल ले रहे हैं। बाकी सरसों ऐसी फसल है, चना ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, ये जितनी खाद हम दे रहे हैं गन्ने में उसी से हो जाती हैं। बाकी खाद के साथ जैसे सल्फर ही किसान भाइयों को देनी है तो मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, ये सरसों के बीज के साथ जो ग्रेन्यूलर सल्फर होती है वो बीज के साथ ही मिला के दे सकते हैं,
3: मतलब दाने वाली,
2: दाने वाली जो 80% WG करके आती है वो आप बीज के साथ ही मिला के दे सकते हो, तो सरसों के साथ साथ बीज चली जाएगी। और किसान भाई कोशिश करें कि अगर खाद लगा भी रहे हैं तो वो कूड़ में ही लगाएं, उससे अधिक लाभ होगा और खाद की बचत होगी।
0: बेसल एप्लीकेशन कर रहे
2: बेसल
0: हैं
2: एप्लीकेशन
0: तो
2: कर रहे हैं।
0: ऐसा वो इसलिए कहा जाता है कि DAP जो है वो इसके अंदर DAP के रूप में दे रहे हैं या NPK 12-32 के रूप में दे रहे हैं, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, मोबिलिटी नहीं है, गतिशीलता नहीं है, जो हमारी नत्रजन है इसके अंदर गतिशीलता है। तो अगर आपने DAP है या NPK 12-32 का है, अगर ऊपर आपने छिटक करके दे दिया तो वो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा और पौधे की जड़ें उसको नहीं ले पाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा DAP को या NPK 12-32 है या पोटास है, ये आप
3: नीचे
0: खून में देंगे तभी पौधे की जड़ें उसको बीज के साथ देंगे, खून में देंगे या खून के बराबर में देंगे तभी उसको उपयोग कर पाएगी, अन्यथा उसका वो जो यूज है वो फास्फोरस का। वैसे भी एक किसानों को, हमारे किसानों को जानना चाहिए कि फास्फोरस की जो सॉल्युबिलिटी है वो 15 से लेकर 18% 20% से ज़्यादा नहीं होती है, नत्रजन की लगभग 50 से लेकर 60% सॉल्युबिलिटी होती है। तो इसके हिसाब से भी किसानों को सोचना चाहिए कि हम फास्फोरस को का सदुपयोग करें, क्योंकि सबसे महंगी खाद जो हमारी फास्फोरस है, जो हम DAP के रूप में या पोटास के रूप में देखते हैं, NPK के रूप में देते हैं, तो इसका अगर आप यूज ऑफ एफिशिएंसी, जिसको मतलब कहेंगे ना प्रयोग दक्षता, उसको नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा खर्चा लागत जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारी बढ़ेगी, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसान।
3: और ये डॉक्टर साहब ना अक्सर किसानों की शिकायत रहती है जी, मेहनत भी करी, हम खाद पानी पूरा दिया, बीज भी अच्छा लिया, लेकिन मुनाफा जो है वो
0: नहीं हो पाया।
3: मुनाफा होगा कैसे?
0: होगा
3: डॉक्टर साहब, एक भी है ना ये भी देखा है कि डॉक्टर आप जैसे अभी एक रोग की बात आई थी, मान लीजिए अभी तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका उपचार किया जाए, लेकिन मान लो कि अब आगे इस हम शरदकालीन की बात करेंगे, आगे भी करेंगे कौन कौन से इसमें रोग या कीट आ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख के ही जो है ना पूरे खेत में छिड़काव मार देंगे।
2: सर एक चीज मैं बताऊंगा, इसमें हमें विशेष बात किसान भाई

0: जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप मुनाफे की बात करते हो तो सबसे पहले आपको अपना हिसाब लगाना पड़ेगा और अपनी लागत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई ऐसा था, हमने डबलिंग किस फार्मर्स इनकम करी, किसान की आय दोगुनी होगी।
1: जी
0: पहले क्या था, आप गेहूँ लें चाहे गन्ना लें, तो गन्ने में भी पैदावार जो प्रजाति डेवलप कर सकते थे वैज्ञानिक। पहले
1: जी
0: जो आपके 226 गेहूँ था, 543 था, ये एक बीघे में 2-2.5 क्विंटल निकलते थे।
1: जी
0: अब यदि हम बात करें तो 4 से 5 क्विंटल अमूमन निकल रहा है। तो प्रजाति तो हमने विकसित कर ली, 5 क्विंटल से मुकाबले 2 से 2.5 और 2.5 से 5 हमने कर लिया।
1: जी
0: अब 5 से 10 कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें अपनी लागत पर भी ध्यान रखना है। जैसा कि सर ने बताया कि हम खाद की उपलब्धता अगर हमारे पास कम है, किसान भाई आजकल परेशान है कि डीएपी नहीं मिल पा रही है, डीएपी उनको जितनी आवश्यकता है उसी के हिसाब से अब सरकार ने नए नियमों के हिसाब से मिलेगी, तो वो इसी हिसाब से बताया कि आप वैज्ञानिक विधि से खेती करें, कूड़ में ही खाद दें, जिससे कि 15 से 20% की आपकी खाद की आवश्यकता कम हो जाएगी। नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की दोनों की ही यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि पौधा इस्तेमाल जो कर पाता है मुश्किल से 15 से 20%, 25% तक इस्तेमाल कर पाता है, इसको हम स्प्लिट डोजेज में देंगे। फॉस्फोरस और पोटाश तो हमको बुआई के समय में बेसल में ही ज़मीन में दे देनी है। नाइट्रोजन की जो हम यूरिया की जो पूर्ति देंगे वो 3 बार में देंगे, 1/3 हम बुआई के समय देंगे, और बचे हुए 2 हिस्सों में हम इसको पहले दूसरे पानी पे और चौथे पानी के साथ या तीसरे पानी के साथ हम इसको आवश्यकता अनुसार 3 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, जैसा भी आपका खेत चल रहा है उसके हिसाब से आप नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रयास ये करें कि ऊपर से हम जो भी पोषक तत्व देंगे वो स्प्रे के माध्यम से दिया जाए। डायरेक्ट नैनो डीएपी के माध्यम से हम स्प्रे कर सकते हैं, डीएपी ऊपर से हम एनपीके का स्प्रे कर देते हैं, या नैनो यूरिया हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। अब आजकल नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी हमारे पास बाजार में उपलब्ध हैं, तो ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि जिनकी कमी हमको पता नहीं चलती है, लेकिन एक्चुअल में इनकी कमी आजकल खेतों में और फसलों में अमूमन पाई जा रही है। जो कि आपके पत्तियों पर सफ़ेद से निशान आने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी जो है काले ब्राउन से स्पॉट्स आते हैं, तो वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होते हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान रखना है। लागत पर हम लोग अपनी कम करें, लागत पर वर्कआउट करने की हमें आवश्यकता है। किसान केवल एक रेट रेस में या देखा देखी में डाई और यूरिया और अनावश्यक पोषक तत्व लगा देता है, नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर ज़्यादा लगा देता है, जिनको ज़्यादा लगाने से भी रोग और कीट का जो अटैक वो कहीं बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो दो तरह से नुकसान होता है, ज़्यादा खाद लगाएंगे आपका आर्थिक नुकसान है, मिट्टी को भी नुकसान है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है ज़्यादा अधिक खाद लगाने से, और रोग और कीट का प्रकोप भी आपकी फसल पे बहुत अधिक होगा। तो हमें आवश्यकता है कि आजकल अपनी लागत पे ध्यान दें, लागत कम होगी तो निश्चित रूप से हमारा मुनाफा अधिक आएगा।
1: डॉक्टर दुबे, आपने बहुत ही विस्तार से बताया है और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे सुनने वाले किसान भाई हैं वो आपकी बात पे ज़रूर अमल करेंगे। और ये जो बात आपने कही है ना, ये हम कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे हम बात करें कि लागत किसान की कैसे कम होगी। अब जैसे आपने बता दिया कि जो खाद नीचे होनी चाहिए बीज के उसको नीचे डालिए, जो आपको ऊपर से छिड़कनी है उसको छिड़क के डालिए। अब बहुत सारी आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात की है, जो न्यूट्रिएंट्स और जो उसमें आ गए हैं तो उनको आप छिड़काव करके डालिए। और सबसे पहली जो बात डॉक्टर साहब ने कहा था ना जी, किसान बहनों भाइयों, कि आप फसल लेने से पहले अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जाँच जरूर करा लें, क्योंकि उसमें जो मोटी मोटी खाद हम दे रहे हैं उसके अलावा भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कितने डॉक्टर साहब, कितने, 16 कितने
0: लगभग
1: होते हैं?
0: 16-17 हो गए हैं। 16 हमारे मुख्य रूप से थे, बाद में एक ऐड हुआ था, निकल ऐड हो गया था, 17 हो गए थे। और आवश्यकता ये है कि हम CHO 3 तो हमें वायुमंडल से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है।
1: जी
0: इसके बाद जो 3 हमें पोषक तत्व जरूरत होती है NPK होती है। हम या किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, NPK के माध्यम से ही खेती को पूरा करने की कोशिश करते हैं। NPK अगर आपको लगाना पड़ेगा 10 किलो, तो अगर पोषक तत्व आप 1 किलो ही लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसलिए आजकल किसान भाई जैव उत्तेजक ह्यूमिक के रूप में काला सोना जिसे बोलते हैं वो
1: जी
0: लगा रहे हैं कि जड़ विकास अच्छा होगा, टिलरिंग अच्छी होगी, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का कट्टा लगा रहा है। पहले किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट केवल धान में जानते थे,
1: जी
0: जिंक और
1: जी
0: जिंक की कमी के लिए लगाते, अब आजकल हम माइक्रो न्यूट्रिएंट गन्ने में भी, गेहूं में भी, सब जगह लगा रहे हैं। कुछ रीजेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि हम दवाई कीटनाशी के साथ साथ हम उस खाद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्रोत अब हमारे पास IPL के भी और कंपनियों के भी हमारे पास जैविक उत्पाद भी हैं जिनका हम इस्तेमाल बढ़ाकर कर सकते हैं, जिनसे रसायनों के पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमें अच्छी उपज भी, यील्ड भी, पैदावार मिल जाएगी।
1: बहनों भाइयों, कार्यक्रम हमारा चल रहा है गन्ने की पाठशाला, और इसका आज का जो कार्यक्रम का विषय है वो है शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारियां। यानी आप अगर शरदकालीन गन्ना लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी आप किस्में लेंगे, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, भूमि

0: जो आपकी है खेत की जो भूमि है उसका शोधन कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, या जो बीज आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी अच्छी प्रजाति है, ये हमें डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बताई, उसका बीज का शोधन करना है बिजाई से पहले, वो किस तरह से करना है वो भी बताया है। लेकिन आप नहीं सुन पाए तो दोबारा फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, हम अभी समय है हमारे पास, तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समस्या है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम ज़रूर करें।
1: देखिए पाराशर जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों की बात होती है,
0: जी
1: हमारे जब से ये आधुनिकता क्या हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कॉमर्शलाइजेशन हुआ है और सघन खेती की तरफ हमारा किसान बढ़ा है,
0: जी
1: उसके साथ साथ में सॉयल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ है, मतलब उसके
0: वो
1: प्रति
0: कहीं ना
1: केयरलेस
0: कहीं, हाँ कहीं,
1: केयरलेस हुआ
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: और उसका परिणाम यह है कि आप ज़्यादातर का देखेंगे कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक लेवल, जिसको जीवांश कहते हैं, वो उसका स्तर काफ़ी नीचे गया है, और उसका स्तर नीचे जाने की वजह से ही आज ये परिणाम है कि हमको जिंक भी देनी पड़ रही है, हमको कॉपर भी देना पड़ रहा है, हमको फेरस सल्फेट भी देना पड़ रहा है, मॉलिब्डेनम और ह्यूमिक एसिड, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें हमारे किसान भाई जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत जो आधार है, जैसे कहते नहीं कि कोई बिल्डिंग बनानी है उसके लिए हमको नींव का मजबूत होना ज़रूरी है,
0: एक फोन आ
1: तो
0: गया डॉक्टर साहब, चर्चा आपको रोक रहा हूँ,
1: हाँ
0: माफी चाहता हूँ, एक फोन
1: जी
0: आ गया। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं जी?
2: सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। सर
1: हाँ बताएं।
2: हमारा गन्ना बुआ खड़ा है 86032।
1: हाँ 86032। हाँ जी
2: 38 नहीं है वो, 86032 सर। तो
1: हाँ
0: अच्छा बताएं।
2: सर वो बुआ हुआ है, कौन से बुआ? 24 सितंबर गन्ना बुआ हुआ सर हमारा वो।
1: कब का? 24 शरतकालीन बोया हुआ है, 24 सितंबर
2: तो
1: दो
2: पेडी
1: हजार
2: हाँ, तो
1: दो
2: उस
1: हजार
2: गन्ने को अब दोबारा बोना चाहते हैं, वैरायटी को अब किस समय में बो पाए उसे?
1: नहीं, अब आप उसके यही तो आप उसका जो बाबक है, अब उसका बीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना
2: हाँ
1: उसमें?
2: जी जी जी जी जी
1: हाँ तो
2: साहब।
1: बिल्कुल, आप अक्टूबर में आप उसका वो एकदम मेज उस पर आया होगा, और आपकी फसल जो है, जो बीज लिया जाता है वो ज़्यादातर शरतकालीन का ही लिया जाता है। कारण क्या है कि आपकी फसल सितंबर से ली गई, और सितंबर लगभग 10 से 12 महीने की फसल आपकी फसल हो चुकी है,
2: जी
1: तो
2: साहब जी
1: अब
2: साहब जी
1: अक्टूबर में आप उसको बुझाई के लिए लेंगे तो उसका ही बीज लीजिएगा, और बीज कोशिश करिएगा कि 1/3 हिस्सा ही बीज में इस्तेमाल करें, और
2: जी सर
1: बीज का शोधन जरूर करें। शोधन करना परम आवश्यक है। देसी खादों का जरूर प्रयोग करेंगे। आप देसी खाद नहीं मिल पाती है तो एक नया काम अभी सरकार ने चलाया है, सभी जगह पे सीवीजी प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें
2: जी
1: जिससे FOM जिसको कहते हैं, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, लिक्विड में भी आती है
2: जी सर
1: और गोबर की खाद की तरह से आती है, इसका
2: जी
1: भी अगर
2: सर
1: आप खेत में प्रयोग करेंगे तो
2: हाँ जी
1: आपके खेत में जीवांश का स्तर बढ़ेगा, और आप बुझाई टेंच मेथड से करें और गन्ने के साथ में सह फसली खेती जरूर लें। देखिए मैं अभी
2: सर
1: जी
2: हाँ जी जी
0: किसान भाई, अपना नाम और बताओ एक बार।
2: मेरा नाम मतलब जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, मैं बलबीर सिंह का पोता हूँ, गोलू।
0: अच्छा
2: अच्छा
0: अच्छा अच्छा
2: नहीं
0: ठीक है,
2: नहीं
0: बलवीर सिंह
2: हाँ
1: जी,
0: जी जी
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है
1: जी
2: मैं कह रहा
1: भाई।
2: था सर
1: हाँ
2: कि 86032 गन्ना वैरायटी अच्छी है ना काफी?
3: तो आपने कर ली तो आपको
1: देखिए
3: बेहतर पता
1: ऐसा है
3: होगा,
1: कि
2: अच्छी वैरायटी है।
1: आप वैरायटी अच्छी है, आप वैरायटी को उसको देख लीजिए, और शुगर मिल आपका कौन जो लगता है उस शुगर मिल से देख लीजिए कि इसकी क्या जो उनकी सप्लाई चेन में है कि नहीं है
3: रिकवरी
1: वैरायटी।
2: कैसी है? नहीं है का सर, ये अर्ली ले रहा है,
1: हाँ
2: वो चल रहा है।
1: अर्ली सप्लाई
2: अच्छा
1: चेन में
2: हाँ जी
1: देखिए, एक दो चीज़ें हैं, एक
2: हाँ जी
1: सप्लाई चेन देखनी है और दूसरी आपने खुद ही उसको 11 महीने से लगा रखा है तो आपको पता है उसकी ब्याथ कितना है, उसकी पेड़ी
2: नहीं,
1: कितनी है,
2: गन्ना
1: उसकी
2: काफी
1: गन्ने की
2: अच्छा हुआ है
1: मोटाई
2: सर इस
1: कैसी
2: खेती
1: है,
2: में।
1: गन्ने का की आंख कैसी है, ये सब आपके सामने देखा हुआ है तो
2: नहीं
1: उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है,
2: अच्छा
1: आप
2: खड़ा
1: उसको
2: गन्ना,
1: भी
2: काफी अच्छा खड़ा गन्ना
1: हाँ।
2: खेत में जी
1: और बुवाई आप उसकी 2 आंख का टुकड़ा काटिएगा, 3 आंख का
2: सर
1: टुकड़ा न बुवाई करें, बीज का
2: जी सर
1: शोधन अवश्य करें,
2: जी सर।
1: ये
2: तो
1: ध्यान
2: सर
1: रखें।
2: बुवाई में खेत में क्या क्या डालने में फायदा रहेगा अच्छा, मतलब अच्छे गन्ने उगा के लिए?
1: देखिए अभी पीछे भी हम लोगों ने बताया था आपको कि डीएपी डालें, डीएपी नहीं अगर आपको मिल पा रही है तो मैं तो सबसे बेहतर ये सभी किसानों से कहता हूँ कि NPK 12/32/16 का आप प्रयोग ज़्यादा करें।
2: जी सर जी सर
1: हाँ 12/32/16 जो है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर, क्योंकि इसके अंदर पोटाश की मात्रा, अगर आपको
2: जी
1: किसी कारणवश पोटाश नहीं मिल पा रही है तो पोटाश की पूर्ति आपके उसके से हो जाएगी खेत के अंदर, क्योंकि पोटाश देना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर हमारी खेत ज़मीनें हैं वो पोटाश के लिए अब की कमी देखी जा रही है,
2: जी
1: तो
2: सर जी सर
1: पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, साथ ही साथ आप उसमें जिंक सल्फेट जरूर डालें बुवाई के
2: हाँ
1: समय पर।
2: सर, ज्यादातर मैं लगाता हूँ पोटाश और मतलब डीएपी और रिजेंट।
1: हाँ
2: अच्छा
1: री
2: रिजेंट
1: नहीं
2: का
1: रि, नहीं को रीजेंट को आप किस तरह से इस्तेमाल, अगर आपके इस समय गन्ना बो रहे हैं, इस समय रीजेंट डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि इसमें इस समय गन्ने में

0: टर्माइट अगर दीमक की समस्या है तो मैं आपको मैं मान सकता हूं, अगर दीमक की समस्या नहीं है तो इस समय आपके खेत में अर्ली शूट बोरर नहीं आएगा। अर्ली शूट बोरर जो है वो हमेशा फरवरी के बाद में यानी मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में आता है।
1: जी जी जी
0: तो इसलिए अभी रीजेंट डालने की आवश्यकता नहीं, रीजेंट आप डालिएगा फरवरी के बाद में, मार्च में डालिएगा।
2: तो किसान भाई, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, आप कार्यक्रम में आए, किसानों की बहुत सारी समस्याओं की आपने उसका सुलझाया, साथ ही साथ जानकारी बहुत अच्छी थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसान भाइयों को राम राम, फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में एक बार, धन्यवाद।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
5: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। आज का जो विषय था, शरदकालीन गन्ने की बिजाई हेतु तैयारी। डॉक्टर साहब थे डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा और दूसरे हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सौहार्द दुबे, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पाराशर। इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वालों का हमारा राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर, कार्यक्रम संयोजक थे शिव नंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब गजल और कवाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल कवाली के अंतर्गत ये चंद खूबसूरत सी गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार करने को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस विधेयक के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मंजूरियों, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। भवन योजना, अग्निशमन मंजूरी के साथ पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में होंगी। साथ ही दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा।

कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्व घोषणा की सुविधा होगी। वहीं निर्धारित समय सीमा में फैसला नहीं होने पर कुछ मामलों में मंजूरी स्वतः मानी जाएगी। नए पंजीकृत उद्यमों को 3 साल तक सामान्य निरीक्षण से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों से दिल्ली में कारोबार करने में लगने वाला समय, लागत और अनिश्चितता काफी कम होने की उम्मीद है। इससे नए निवेश को आकर्षित करने और बड़े

0: को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक की। बैठक में सांसद रामवीर सिंह भिदूड़ी, मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल सहित दिल्ली के 33 विधायक शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार ने मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव लिखित रूप में देने के लिए 15 दिन का समय मांगा। बैठक में पारगमन उन्मुख विकास, लैंड पुलिंग, अनधिकृत कॉलोनियां, हाई डेंसिटी कॉरिडोर और लो डेंसिटी एरिया समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कड़ी में प्राधिकरण ने अगले 3 महीनों में लगभग 20 हितधारक बैठक करने का लक्ष्य रखा है। इनमें सरकारी एजेंसियों, उद्योग संगठनों, वास्तुकारों, निवासी और आवास समूहों, किसानों, व्यापारिक संगठनों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पर कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। कार्यशाला में अधिकारियों को नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षित और जिम्मेदार हैंडलिंग के बारे में जागरूक किया गया। विभाग ने डेटा सुरक्षा मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने और प्रत्येक विभाग में डेटा सुरक्षा नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यप्रणाली को भी साझा किया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नालों के रखरखाव के लिए समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि नालों की सफाई और रखरखाव में अब कोई बहाना या जिम्मेदारी को टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार और आपसी समन्वय की समस्या के बीच नालों का रखरखाव रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर एजेंसी को स्पष्ट जिम्मेदारी लेकर तय समय सीमा में अपना काम पूरा करना होगा और लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन था। इसका उद्देश्य भारत की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के जरिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना था। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 6th अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 में कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 6th अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी उन्नत ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर जा रहे बदलाव का समय बताया। डॉ. सिंह ने इस बात पर बल दिया कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रौद्योगिकी, आत्मनिर्भरता, वहनीयता, स्वच्छ ऊर्जा, निजी भागीदारी और नवाचार में एक साथ प्रगति की आवश्यकता होगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उद्योग और पेशेवर संगठन दोनों पक्षों को एक साथ लाने और वर्ष 2047 की ओर भारत की सामूहिक यात्रा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जन सुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के लिए

0: सरकार का दरवाजा खुला रखना, लोगों की बात सीधे और बिना किसी बाधा के सुनना तथा समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना ही दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। जन सुनवाई के दौरान शिक्षा, लंबित पुरस्कार राशि, जल भराव, सीवर, विद्युत सुरक्षा, सफाई और अवैध निर्माण सहित विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच, आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल नागरिकों की शिकायत सुनना नहीं बल्कि शिकायत का समाधान करना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राष्ट्रीय राजधानी के 9 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा को युवाओं के लिए कौशल, रोजगार, आय और अवसर का मजबूत माध्यम बनाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, दिल्ली की स्थानीय चुनौतियों पर शोध को प्रोत्साहित करने और छात्रों को उद्योग के अनुरूप रोजगार परक कौशल देने की बात कही। उन्होंने छात्र मार्गदर्शन, सहभागिता, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना की नागरिक तथा आपातकालीन सेवाओं में भागीदारी और छात्र स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन में विभिन्न बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सड़कों और बाजारों के विकास को लेकर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि लंबे समय तक राजौरी गार्डन के बाजारों और सड़कों को अनदेखी का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा कि राजौरी गार्डन में सड़कें, पानी, सीवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास के काम शुरू किए गए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि राजौरी गार्डन के विधायक के तौर पर उनका लक्ष्य क्षेत्र के हर बाजार, हर इलाके और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत अगस्त महीने में 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया है। इनमें 27 बच्चे और 132 वयस्क शामिल हैं। पुलिस ने CCTV फुटेज, बस और रेलवे स्टेशनों की जांच, स्थानीय पूछताछ और मुखबिरों की मदद से इनका पता लगाया। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 1149 लापता बच्चों और लोगों को उनके परिवारों को सुरक्षित सौंपा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों अवैध प्रवासियों को बाराखंबा क्षेत्र से पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों ने बगैर वैध वीजा के 26 और 27 अगस्त को भारत में प्रवेश किया। पहचान और जरूरी सत्यापन के बाद दोनों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश किया गया। इसके बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल से सुबह 10 बजे से होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के कारण रानी झांसी रोड, देशबंधु गुप्ता रोड, चैम्सफोर्ड रोड, पंचकुइया रोड और आसपास के मार्गों पर भारी जाम के कारण यातायात धीमा रहने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि इस यात्रा में रथों और झांकियों के साथ 2000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले व्यक्तियों को मान्यता देते हैं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहन शक्ति, जोखिम लेने की क्षमता, टीम वर्क और त्वरित तथा प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों, स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। लैंड एडवेंचर

0: श्रेणी में बलजीत कौर और स्लगजैन रिगजिंग, वाटर एडवेंचर श्रेणी में रिमो साहा और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शिवप्रसाद चमौली को पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। चयन राष्ट्रीय चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया। समिति ने नामांकनों का मूल्यांकन किया और राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा की। ये पुरस्कार युवाओं में साहस, सहन शक्ति, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देते हैं, साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी और प्रभावशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगहों पर तेज से हल्की वर्षा हुई, वहीं अन्य स्थानों पर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सुबह से दोपहर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी। बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परामर्श बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कहा, समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:15। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज आनंद लेते हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा जी की आवाज में गाई इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: गीत मालिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं खूबसूरत से ये फिल्मी गीत। आइए ऐसी ही एक और पेशकश सुनते हैं लता जी और किशोरदा की आवाज में।
1: बरसों बाद मैंने फिर हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही क्षणों में सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया।

0: G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया।

0: उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा, आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जांच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र सिक्किम विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Mark de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Barendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to

0: teams, Australia, England, India, New Zealand, South Africa and Sri Lanka. In badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of the China Masters Super 750 tournament with straight game victories in respective singles events in Shenzhen, Guangdong Province. Men's doubles duo Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and mixed doubles pair Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also moved to the next round. The government has announced the Tenzing Norgay National Adventure Awards for the year 2024. The awardees are Waljeet Kaur and Skalzang Rigzin in Land Adventure category, Rimo Saha in Water Adventure category, and Shiv Prasad Chamoli in the Lifetime Achievement category. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization and future water requirements, emphasizes greater adoption of water-saving technologies. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200 with over 4,000 people still missing. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Bart De Wever to arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. And heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए हंगामी सामान की पांचवी खेप भेजी है। मरने वालों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। RBI ने बताया कि खसूसी अमरीकी डॉलर भारत रुपए फॉरेक्स स्वैप सहूलत के तहत 31 अगस्त तक 136 अरब अमरीकी डॉलर नकद रकम के तौर पर मौसूल हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला CEO मुकर्रर किया है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई और कनेक्टिविटी के मामलों को तरजीह दी जाएगी। मशरकी मध्य प्रदेश, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है और भारत अव्वलीन ख्वातीन चैम्पियन ट्रॉफी 2027 की मेज़बानी के लिए मुंतखब हुआ है। श्रीलंका को मेज़बानी से हटा दिया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल में अपनी राहती कार्रवाई को तेज कर दिया है और उसने इमरजेंसी साजो सामान की पांचवी खेप वहां पहुंचाई है। नेपाल में भारत के सफीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि राहत और इमदादी साजो सामान लेकर पांचवा भारतीय तैयारा आज सुपहर नेपाल पहुंचा। तैयारे में 11 अफराद पर मुश्तमिल बचाव टीम भी है जो सुरंगों से बचाने वाले खसूसी आलात से लैस है और साथ ही 5.5 टन जरूरी दवाएं भी तैयारे में हैं। भारतीय फजाइया ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जरूरी साजो सामान पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी। भारत ने तलाश और बचाव में मदद के लिए खसूसी तआवुन भी दिया। इधर नेपाल के वजीर आजम बलेंद्र शाह ने आज पार्लियामेंट में भारत के फौरी रद्द अमल के तहत उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने तबाहकुन सैलाब के अलमनाक हादसे में फौरन तआवुन दिया। बचाव टीमें बदतरीन मुतासर इलाकों में जिंदा बच जाने वालों और लापता अफराद की तलाश में लगी हैं। नेपाल में इस तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1204 हो गई है, जबकि 4216 अफराद अब भी लापता हैं। बचाव में लगे अफराद बारिश और मलबे से नबर्द आजमा हैं ताकि उन लोगों का पता लगा सकें जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो भूटे कोशी दरिया के किनारे वाक़ सुरंगों और जेर ज़मीन पावर हाउसेस में फंसे होंगे। भारत के रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसके खसूसी अमरीकी डॉलर भारतीय रुपए USDINR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी को 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला मौसूल हुआ है। कुल नकद रकम में से गैर मुल्की करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक FCNRB में जमा रकम ज़बरदस्त अक्सरियत की हामिल है, जो 127.2 अरब

जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए। लता मंगेशकर व आशा भोसले, दरअसल में जहान आरा, मीहाना।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरार।

मधुबन में राधिका नाचे रे। तरानी मिशन अवीत बेसदाइए मोहम्मद रफ़ी असल में कोहे नूर।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

आरा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हित

0: हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि इस शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और संबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई जरूरी है। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की पांचवी उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विनाशकारी बाढ़ से 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष मंत्र नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। जी टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse of an avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies

और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत ओपी नैयर का। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की सुंदर खूबसूरत रचना, पहली रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। जी हाँ, छेड़छाड़ वाला ही समझ लीजिए, ये खूबसूरत गीत है और वाकई बहुत ही कमाल का है ना। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर खूबसूरत रचना, और ये रचना है ना तूफान से खेलो, उड़न खटोला फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। उड़न खटोला फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद का। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, ना तूफान से खेलो, वाकई बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बड़ी रंगीली जिंदगी। जी हाँ, फिल्म श्रीमती 420 फिल्म से, जो 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है। आवाज गीता दत्त की और संगीत ओपी नैयर का। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर गीत।

0: लगी है, मजा ये जिंदगी है, तू मुस्कुराए जा।
1: वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन खूबसूरत गीत, मजा आ गया है ना हम सबको। बढ़ते हैं एक और सुंदर गीत की ओर। ये गीत है बड़ा ही मस्ती भरा लाजवाब गीत, सर पे टोपी लाल। जी हाँ, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, फिल्म तुमसा नहीं देखा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में सुंदर रचना। संगीत ओपी नैयर साहब का ही है और फिल्म तुमसा नहीं देखा जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है, इसी फिल्म का गीत बड़ा ही सुंदर है और मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में बेहतरीन मस्ती भरा लाजवाब अनमोल गीत।

क्या मस्ती भरा लाजवाब खूबसूरत गीत, वाह, छेड़छाड़ा भी, रोमांटिक भी, बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना अभी आपने सुनी। जी हाँ, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत भी बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। चांदी का बदन, जी हाँ, फिल्म ताजमहल से, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना है। मन्ना डे, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में, यानी कि तीन गायक हैं जिन पर फिल्माया गया है। सुंदर खूबसूरत उनकी आवाज़ में 1963 प्रदर्शित फिल्म है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बेसिकली एक कव्वाली है, बहुत ही प्यारी कव्वाली है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना कव्वाली के रूप में।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कव्वाली। आपस में बहस चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तीन तीन गायकों के साथ साथियों, एक और प्यारा सा गीत आ रहा है, गोरी जरा हंस के तो दू। असली नकली फिल्म से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुंदर रचना, और ये फिल्म असली नकली 1962 प्रदर्शित फिल्म रही है, और गीत हसरत जयपुरी के हैं, संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।
1: गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू।

0: जरा छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा।
1: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। साथियों, इस प्रोग्राम को आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन सकते हैं। साथियों, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है और ये रोमांटिक है लेकिन थोड़ा सा गमगीन भी है। तो ये गीत है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिल्म मेरे महबूब से मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर रचना, जो 1963 प्रदर्शित फिल्म मेरे महबूब से था। गीत शकील बदायूं ने के और संगीत से सजाया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं सुंदर और खूबसूरत अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुंदर रचना, एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत आ रहा है। ये गीत वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद शायद हमारे लिसनर्स हैं या श्रोता साथी हैं तो उनको भी शायद ये गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, कल भी हमने एक गीत गुनगुनाया था और वाकई वो गीत दोबारा से हम प्ले कर रहे हैं और ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म वो कौन थी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन थी 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है वो कौन थी, और संगीत मदन मोहन का है। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

हमारे जो वाइब्रेशंस होती हैं और जो ऑरा होती है, जी हाँ, दिल में, दिल से दिल तक मिल जाती हैं, है ना साथियों। कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम प्रस्तुति आ रही है बहुत ही सुंदर गीत के साथ, और ये प्रस्तुति वाकई बहुत ही लाजवाब है। मेरा प्यार भी तू है, बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है, और मेरा प्यार रूप सुंदरी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में शानदार रचना है। रूप सुंदरी फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है, संगीत सरदार मलिक का है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम शुरू के गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम रचना। छोड़े जा रहा हूँ इस खूबसूरत गीत के साथ, मुझे दीजिए इस खूबसूरत कार्यक्रम गीत सुनहरे से इजाज़त। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, यो कव्वाली वाकई मुझे भी पसंद है, लग जा गले से लग जा। जी हाँ, जब गले से लग जाते हैं तो

गगन भी जो दिशाएं

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया, ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की और जोर देकर कहा कि शिखर सम्मेलन से उपजे कार्रवाई योग्य और समयबद्ध कार्य बिंदुओं को निरंतर समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा

0: और आगे की कार्रवाई जरूरी है। भारत से नेपाल पहुंची 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविली शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a 5th tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice or rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in the northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in the parliament yesterday, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people.

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, दो गीत अब भी हम प्ले करेंगे और वाकई बहुत ही अच्छे अच्छे गीत अभी आप सुन रहे थे और हमें भी बेहद खुशी है कि आप सभी साथी भी सुन रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब साथी सुन रहे होते हैं किसी भी कार्यक्रम को। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत बहार। गीत बहार में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है और हमारी एक साथी हैं, सुनना चाहती हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। जी हाँ, तो सुनवा रहे हैं उनको बहुत ही खूबसूरत गीत, ये रात फिर ना आएगी फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में शानदार रचना। ये फिल्म ये रात फिर ना आएगी 1965 प्रदर्शित फिल्म है और गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत से सजाया है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत, मुझे भी बहुत ही पसंद है और हमारी सखी को भी शायद ज़रूर पसंद आएगी ये खूबसूरत रचना। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार, बेहतरीन आज के कार्यक्रम गीत बहार की सेकंड लास्ट प्रस्तुति।

0: अरे यार कन्हैया बैठा चुप है भैया।
1: मेरा भैया?
2: हाँ हाँ तेरा भैया, हाँ हाँ मेरा भैया।
1: भैया भैया बोलो भैया।
0: बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया।

0: भाभी
1: मैं भाभी ढूंढ के लाऊं छी मुझे शर्म
2: बोली सावन की रात
0: ओ बड़ी पावन है बात
3: जी हाँ श्रोताओं इन्हीं सभी गीतों के साथ आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति 3 बजने के हैं अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया ताकि वे कुशल समाधान विकसित कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम हो सकें। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल को बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। उड़ान में 11 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम और 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक

0: लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बेल्जियम की रक्षा मंत्री थियो फ्रांकिन भी हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे प्रधानमंत्री डी वेवर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के एशविले शहर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और उन्नत प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के प्रयास में अलग से कई द्विपक्षीय बैठकें की। आर्थिक और वित्तीय मामलों के यूरोपीय आयुक्त वाल्डिस डोम्ब्रोव स्कीम के साथ बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितम्बर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए 4 सितंबर की सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायण ने कहा कि EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और यह भू समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। 2020 महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन बनाए। महिला एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना हांगकांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in the parliament yesterday, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share the responsibility for mitigating.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गजल और गीत। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं तलत अजीज की गाई हुई ये गजल।

ये गजल आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत और गजल। इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के में अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

ये गज़ल आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में। अब आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये खूबसूरत सी गज़ल।

ये गजल आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज में। अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की आखिरी गजल सोनाली राठौर की आवाज में।

कार्यक्रम की ये आखिरी गजल आप सुन रहे थे सोनाली राठौर की आवाज में। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत और गजल अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कर्नाटक भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि। तदनुसार 3 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर।

आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 से। 7:30 पर होगा हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर।

जिन दिन ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर, 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग अयोध्या कांड भाग 37।

प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन में 10:10 से। 11:10 पर होगा कार्यक्रम स्वरांजलि। ये तो थी हमारे कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पहले आप हिंदी में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में जल की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को दुनिया के सर्वोत्तम तौर तरीकों से रूबरू कराने सहित उनके लिए समर्पित प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने तथा व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल और तिब्बत में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। भोटेकोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक लापता हैं। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11,993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरांग काउंटी में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञों का दल विशेष उपकरणों के साथ कल त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वे नेपाली सेना के साथ मिलकर आज से काम शुरू करेंगे। भारत की ओर से नेपाल

0: बचाव और राहत सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना की 5वीं उड़ान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंची। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल साजो सामान और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से ज्यादा बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई सहायता खेप के साथ भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि अमरीका का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। उन्होंने तर्क दिया कि बेहतर संबंध व्यापार के लिए भी लाभकारी होंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। यह मैच यूएई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivers for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is being accompanied by Belgian Minister of Defence, Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in the northern and central Nepal on the 26th of last month. Japan credit rating agency JCR has upgraded India's long-term foreign currency and local currency issuer ratings by one notch from BBB+ to A- while maintaining the stable outlook. JCR has also raised India's country ceiling by one notch to A. Finance Ministry said that the upgrade reflects India's solid economic growth, the effectiveness of economic policies in strengthening the foundations for growth, and the improved soundness of the financial system. The ministry said that the upgrade comes against the backdrop of a challenging global environment and underscores the continued strengthening of India's economic fundamentals, supported by sustained growth, effective economic policies, improved fiscal quality, and a stronger financial system. India has unequivocally condemned the act of vandalism of a century-old Hindu temple in

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से

श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं।